सुप्रभात, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 14, तदनुसार 5 अगस्त वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली हिंदी में समाचारों के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा

0: मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं। समय हो गया है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदनवार का।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज का परिश्रम

कल का परिणाम तय करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271। छह 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। 7 भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव।

そうか。8बजकर 30 मिनट पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9 बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। ग्यारह बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। दोपहर 2 बजे त्रिवेणी। सुनिए आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। बजकर 30 मिनट पर सदा बहार नगमे। 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में आज के मेहमान लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन है आर.के. शर्मा का और निर्देशन है नीलम चोपड़ा का, 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। रात 9 बजे सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतु चक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्जवल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्व

आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

वर्षा चौमासा प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की, इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आपका स्वागत है और शुभा जी आपका भी स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमने शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित राग हैं, की आपने चर्चा की और बंदिशें भी सुनाई।
1: जी।
0: लेकिन शुभा जी, मुझे एक सवाल हमेशा मन में ये उमड़ता घुमड़ता रहता है कि ऐसी जो बंदिशें हैं वो क्या सिर्फ मल्हार ही में मिलती हैं, किसी और राग में?
1: जी, बहुत सारी हैं ऐसे अन्य रागों में जिनका वर्षा से ऐसा कोई संबंध नहीं है रागों का, लेकिन जो बंदिशों की जो साहित्य है वो वर्षा से संबंधित जरूर मिलता है।
0: जी।
1: एक ऐसी बंदिश है जिसे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी उससे परिचित होंगे, राग बिहाग की एक बंदिश है, लट उरझी सुलझा जा रे बालम। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, और क्योंकि बिहाग ऐसा राग है, एक महाराग है, जिसे शुरुआत में भी सिखाया जाता है, यानी जो सीखना शुरू करता है वो उसके पहले दूसरे साल में आपको बिहाग जरूर सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बंदिश से परिचित होंगे। मुझे जो एक बात इसमें अलग लगी कि ख्याल के रूप में तो इसे गाया ही जाता है, ख्याल गायक इसे गाते ही हैं, लेकिन मुझे यही साहित्य और यही पद, यानी जो साहित्य है, वो मुझे वैष्णव मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में, जो उत्तर भारत के कृष्ण मंदिर हैं, उनमें आप जानते हैं कि संगीत के बिना सेवा ठाकुर की पूरी नहीं होती है। राग सेवा
0: ये सनातन परंपरा है।
1: जी बिल्कुल।
0: अष्टछाप कवियों ने जी इसका
1: जी और ऐसा साहित्य और ऐसा संगीत मिलता है उसमें जो कि बिल्कुल खजाना सा है, तो उसमें यही साहित्य मुझे मिला, लेकिन उसे तीज के पदों के एक संग्रह में शामिल किया गया था।
0: जी, जी।
1: तो हम तो जब ख्याल गाते हैं तो एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, लेकिन उस पद में जैसे तीज का पद कहा गया, और वो ठीक भी लगता है क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु के ही दौरान आता है, और मुझे याद है कि अब भी जो एक तीज के समय मेहंदी लगाई जाती है, कन्याएं सुहागिनें सब जो है सज धज के और मेहंदी लगाती हैं,
0: हरी चूड़ियां
1: लाल चूड़ियां, मणिहारन बुलाई जाती है चूड़ियां पहनाने के लिए घर की महिलाओं को, और माँ की ओर से साड़ी श्रृंगार का सामान ये सब आता है, तो झूला पड़ता है, झूला भी झूला जाता है तीज के दौरान, तो ये बिल्कुल इसका जो साहित्य है वो बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि तीज का पद क्यों कहा जाए इसे।
0: शुभा जी, भारतवर्ष में जगह जगह सावन ऋतु, सावन और जो आप ये कह रही हैं त्योहार, थोड़ा सा फर्क होगा इसको मनाने की जो पद्धति रीति है उसमें फर्क होगा, लेकिन मनाया तो जाता ही है।
1: जी हाँ, किसी ना किसी रूप में धरती का जो एक की जो उपजाऊ एक
0: सृजनशीलता,
1: बिल्कुल, उसको नवाजा जाता है, उसको नमन किया जाता है, और प्रार्थना होती है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे।
0: जी।
1: तो इस पद में क्या कहा गया, जो नायिका है वो तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तो अब संकेत कैसे करे वो नायक को, कैसे उसे अपने पास बुलाए, तो वो कहती है लट उरझी सुरझाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। वो तो बेबस है, वो तो मजबूर है, अपने दोनों हाथ तो वो लगा ही नहीं सकती है अपने केश पे, तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। फिर जो तीन अंतरे हैं वो इस प्रकार हैं, सिर की सारी सरक गई है, जो साड़ी का जो घूंघट है जो सर पे लिया था वो सरक गया है, अपने हाथ उढ़ाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है।
0: वाह।
1: फिर दूसरा अंतरा उसके बोल इस प्रकार है, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, शायद हाथ लगा हो तो बिंदी भी गिर गई हो, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, हा हा करत लगाए जा बालम।
0: हा हा करत,
1: हाँ, मतलब एक बुलाने का तरीका है।
0: हा।
1: नीलांबर प्रभु गुण ना भूलू,
0: हाँ,
1: बीरी नैक खवाए जा बालम, बीरी यानी पान का बीड़ा,
0: हा,
1: वो भी मुझे अपने हाथ से खिला दो, ऐसा निवेदन है।
0: जी।
1: तो ये पद तीज का पद जो कि यदि हम उसे बिहाग में बैठा के आलाप इत्यादि के साथ, बढ़त के साथ गाएं, तो वो ख्याल गायक भी गाते हैं, और मंदिरों में ये तीज के पद के रूप में भी सुनने को मिलता
0: है। और भले ही इसमें जैसे उमड़ घुमड़ कर आई घटा और ये सब ना भी हो, फिर भी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में इसे मनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: त्योहार
1: बिल्कुल मनाया जाता है।
0: उस समय तो नायिका के हाथों में जब मेहंदी लगी है, और हर जगह हर प्रांत में ये होता है

0: कि सावन में हाथों में मेहंदी तो लगाई जाती है, तो सुनाएंगी आप ये पूरा पद या
1: बिल्कुल
0: क्या मन है?
1: बिल्कुल पूरा पद भी सुनाऊंगी और ये भी कहूंगी कि हर रचना का जो साहित्य है उसे यूं ही उड़ा नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियां पिरोई हुई आपको मिलेंगी।
0: और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर सी बनी हुई है ये चीजें, बंदिशें, तो इनको सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत ही उपयुक्त होगा।
1: राग बिहाग का चलन कुछ इस प्रकार है।

0: था तीज का पद, तीन अंतरे बड़े ही सुंदर राग बिहाग में। शुभा जी, आज हम यहीं रुकते हैं, श्रोता मित्रों से भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: हाँ, मैं विविध भारती से बोल रही हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पतीता फिल्म से आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म से ये गाना, असद भोपाली के बोल और संगीत हुस्नलाल भगतराम का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दिले नादान फिल्म से, सुधा मल्होत्रा की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आवारा फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

नमस्कार, हाँ मेरा ही प्यार के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म के गाने के साथ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपराध फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दो चोर फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम का के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: जीत फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज

0: कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से गाना। असद भोपाली के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: हमें रही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13

0: भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25

0: प्रतिशत पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की

0: पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। NEET UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। श्रोताओं, आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई। और फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो यह है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक पहेली के साथ। यहाँ वहाँ हर जगह जो आपका पीछा करती है, दूर रहती है फिर भी साथ में है, हर परेशानी के सामने खड़ी हो जाती है, आखिर है किसकी ये परछाई जो आपका पीछा करती है। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुदक्षिणा के साथ।

रौनित सरकार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना, स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत, फिल्म हेलीकॉप्टर इला।

और हम इस फिल्म से आप सुन रहे थे अदनान सामी और श्रेया घोषाल की आवाज में गाना मुन्ना दिमान के बोल और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे दिलवाले फिल्म से गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं वीआर फैमिली फिल्म से, अनुष्का मनचंदा, आकृति कक्कड़ और सूरज जगन की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक रोमांटिक लड़की का रोल हूँ या यू मी और हम में मैच्योर लव का कैरेक्टर। काजोल बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में से एक है। 90s में इनका सितारा खूब जगमगाया और अब उनके कमबैक से बॉलीवुड के सारे फैंस बहुत खुश हैं। इनकी रिसेंटली कुछ फिल्म्स का नाम लें तो तानाजी, हेलीकॉप्टर, ईला माँ जैसी फिल्म्स ने आजकल ही नजर आ रही हैं। काजोल के बारे में जानिए कुछ और बातें 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में।
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहाँ तक कि।
2: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं।
3: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
4: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
3: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
4: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
3: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
4: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
3: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
5: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए

0: अदबख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। राशिद अली की आवाज में जाने तू या जाने ना फिल्म से ये गाना अब्बास टायर वाला के बोल, ए आर रहमान

आप सुन रहे थे ये गाना जाने तू या जाने ना फिल्म से। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसके फैंस तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा फैंस बने इसकी एक्ट्रेस यानी जेनेलिया डिसूज़ा के। आज विविध भारती पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनेलिया डिसूज़ा का बर्थडे। फोर्स फिल्म से आप सुन रहे हैं गाना के और सुचित्रा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लटक गिरे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन भंग और तन पतंग।

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौड़ और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, बरसात का मौसम बहार तो लाता ही है, पर साथ ही बढ़ा देता है पेट की बीमारियों का खतरा भी। ऐसे में क्या खाएं, क्या नहीं, कैसे रखें अपने पाचन तंत्र का खास ध्यान, जानिए इन सभी सवालों का जवाब इस बार प्रोग्राम FM लाइफलाइन में। आज बाद दोपहर 3:30 पर हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर विशाल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: इसी गाने के साथ संपन्न कर रहे हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कार्यक्रम आज का अखबार लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी। दोस्तों कैसे हैं आप? भाई ठीक तो है ना? अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं? रखना बनता भी है, क्योंकि देखिए ये जो मौसम है, बारिश का मौसम, इसमें बहुत सारी बीमारियां अपने साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस लेकर आती हैं, और हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी और भी ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो सेहत एक ऐसा साथी है जो हमारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। अच्छी सेहत आपका सबसे बड़ा साथी है, और आपका ख्याल हम रखते हैं आपको गीत सुनवाकर, आपको इन्फॉर्मेशन देकर, और आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी एक उपहार आप सबको दिया है। जी हाँ, उपहार अच्छी सेहत का। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक ही छत के नीचे आयुर्वेद होम्योपैथी से इलाज मिलेगा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल में। अब चंडीगढ़ के लोगों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया कराने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने शुरू किया है ये हॉस्पिटल, और इसको आयुष इंटीग्रेटेड अस्पताल के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि एक ही छत के नीचे विशेष डॉक्टर्स की ओपीडी, जिसमें पंचकर्म, योग, दवाइयां और भर्ती की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही सेक्टर 11 स्थित सरकारी आयुष डिस्पेंसरी का भी शुभारंभ कल किया गया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 34 स्थित इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल और सेक्टर 11 स्थित सरकारी आयुष डिस्पेंसरी का कल उद्घाटन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि एलोपैथी की जो ओपीडी है वो रात को 11 बजे तक रहेगी। जी हाँ, एलोपैथी की ओपीडी इस महीने के अंत तक रात 11 बजे तक कर दी जाएगी, और अस्पताल के सभी स्टाफ की नेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करवाई गई है, यानी कि एकदम एक्सपर्ट स्टाफ आपको मिलेगा और परामर्श आप जाकर वहाँ ले सकते हैं। ना केवल एलोपैथी बल्कि अगर आपको योग से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आपको योगासन के बारे में पूछना है, आहार विहार के बारे में पूछना है, तो आप वहां पर जाकर सलाह ले सकते हैं, और सेक्टर 34 में ये सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ आपको ये भी बता

दें कि वहां पर 25 बेड की आईपीडी भी है और 24/7 स्वास्थ्य सेवाएं, वैज्ञानिक तरीके से विकसित पंचकर्म यूनिट, क्षार सूत्र से होगा इलाज, योग एवं वेलनेस सेंटर और वरिष्ठ नागरिक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं, जितनी भी सुविधाएं आप सोच सकते हैं जो कि आयुष विभाग आपको दे सकता है, वो एक ही छत के नीचे अब आपको मिल जाएंगी। तो अब इस फैसिलिटी का हमको पूरा पूरा लाभ उठाना है। पहले तो हम यही कामना करते हैं कि आपको अस्पताल तक पहुंचना ही ना पड़े, और अगर ऐसा हो जाए कि आपको ज़रूरत पड़ जाए तो अब आप यहाँ जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं और आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे अच्छा उपचार। और हमारे सिटी ब्यूटीफुल में हमें थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई नई फैसिलिटी मिलती रहती है। हम लकी हैं कि हम सिटी ब्यूटीफुल में रहते हैं और हमें नई नई फैसिलिटीज़ भी मिलती रहती हैं। तो इसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू चंडीगढ़ प्रशासन को।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम आज का अखबार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार यानी हेडलाइंस।

राष्ट्रीय समाचारों में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया नीट पीजी दाखिला प्रणाली ऑडिट के लिए समिति गठित।

जम्मू कश्मीर पूरी तरह साक्षर राज्यों में शामिल हुआ। बीच सफर में डगमगाई एयर इंडिया की फ्लाइट, 12 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को निर्देश, साइबर फ्रॉड से जुड़े खातों के लिए बनाएं एसओपी। अभिनेत्री तृष्णा पर टिप्पणी करने पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम उदयनिधि गिरफ्तार, 9 घंटे बाद मिली जमानत। भर्तियों में गड़बड़ी पर अब रांची में छात्र विद्रोह, 11 दिन से स्टेडियम में डटे हैं छात्र, दूसरे राज्यों के जजों से जांच पर अड़े।

और फोर्ब्स रैंकिंग में 27 टेक कंपनियों के साथ अब भारत दूसरे नंबर पर। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद प्ले करेंगे एक म्यूजिकल नंबर।

डॉक्टर विशाल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

दोस्तों, बरसात का मौसम बहार तो लाता ही है, पर साथ ही बढ़ा देता है पेट की बीमारियों का खतरा भी। ऐसे में क्या खाएं, क्या नहीं, कैसे रखें अपने पाचन तंत्र का खास ध्यान, जानिए इन सभी सवालों का जवाब इस बार प्रोग्राम FM लाइफलाइन में। आज बाद दोपहर 3:30 पर हमारे मेहमान होंगे

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

आइए पहले आपको जानकारी देते हैं ट्राई सिटी की खबरों की। प्रशासन ने कहा SIR में नाम नहीं तो घबराई नहीं, अंतिम मौका भी देगा प्रशासन। पूर्व अग्निवीरों को एग्जीक्यूटिव और वायरलेस कांस्टेबल, जेल वार्डन और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक ही छत के नीचे आयुर्वेद व होम्योपैथी से इलाज इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल शुरू।

चंडीगढ़ के मेंटल हेल्थ केयर में रिफॉर्म, 2026 के नए रूल्स लागू, फर्जी क्लिनिकों पर कसेगा शिकंजा। और क्षेत्रीय समाचारों में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से कुछ समाचार। पंजाब विधानसभा में E20 ईंधन नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित। पंजाब में मतदाता सूची से हटेंगे 20.46, कृपया इसे दोबारा सुने। पंजाब में मतदाता सूची से हटेंगे 20 लाख से अधिक मतदाता, 1.19 लाख के हैं डबल वोट्स। अमृतसर में रेल ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम, आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 9 गुर्गे गिरफ्तार। हरियाणा में अब मोहल्ले में ही होगी दूध घी की जांच, 20 रुपए में होगा मिलावट का खुलासा। हरियाणा सरकार ने सचिवालय में फाइलों पर लगाया विराम, अब हर काम ई ऑफिस से होगा। राष्ट्रमंडल के हीरो देश लौटे, अब हरियाणा करेगा चैंपियंस का सम्मान। ग्लासगो में भारत का

तिरंगा लहराने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोर शोर से स्वागत। और हिमाचल के सिरमौर जिले के कटासन में खड्ड में फंसे 25 लोगों को बचाया गया। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस, और अब बारी एक गीत की।

0: हेलो चंडीगढ़, और उसका विषय है बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ध्यान। तो कॉल करना ना भूलिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी फोन कॉल्स का। और इसी के साथ अब मैं शालिनी इसी दुआ के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप रहें हैप्पी हैप्पी, कार्यक्रम आज का अखबार से आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नोरे ओलिया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा

0: ऐसा नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को कहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 दिसंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

दोस्तों, बरसात का मौसम बहार तो लाता ही है, पर साथ ही बढ़ा देता है पेट की बीमारियों का खतरा भी। ऐसे में क्या खाएं, क्या नहीं, कैसे रखें अपने पाचन तंत्र का खास ध्यान, जानिए इन सभी सवालों का जवाब इस बार प्रोग्राम FM लाइफलाइन में। आज बाद दोपहर 3:30 पर हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर विशाल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

0: हरियाणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

सुप्रभात, नमस्कार। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ शालिनी, और हमेशा की तरह आज भी हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर इस समय बात करना, यानी कि बरसात के मौसम में बात करना हो जाता है बेहद ज़रूरी। जी हाँ, आज बरसात में वाहन चलाने की बात हम कर रहे हैं, और वाहन जब हम चलाते हैं, यानी कि चाहे वो दुपहिया वाहन हो या फिर वो चौपाया वाहन हो, यानी कि गाड़ी हो या फिर टू व्हीलर हो, जब हम गाड़ी चलाते हैं और बारिश के बीच में पानी को चीरते हुए निकल जाते हैं, तो क्या हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो टू व्हीलर्स हैं और ना ही फोर व्हीलर्स हैं, और वो लोग पैदल जा रहे हैं, और उनका हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी उनके पास से गुजार रहे हैं तो अपनी गति को थोड़ा धीमा कर ले, ताकि किसी पर गंदा पानी कीचड़ ना गिरे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है। और हम अपनी जल्दबाजी में कई बार ऐसा कर देते हैं कि गाड़ी को तेज़ गति से ले जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि वहाँ बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है या कीचड़ पड़ा हुआ है, और सामने

0: वाला जो व्यक्ति है उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, और कई बार तो हमें ये रियलाइज भी नहीं होता कि हम किसी को गंदा कर आगे बढ़ गए हैं। तो इस पर बात आज हमें करनी है कि बारिश में जब हम वाहन चलाते हैं, बाकी सावधानियां तो हमें बरतनी ही है कि गाड़ी हमें ध्यान से चलानी है, गाड़ी की जो लिमिट है स्पीड लिमिट उसमें रहकर चलानी है, बल्कि स्पीड लिमिट से भी थोड़ा नीचे अगर हम चलाएंगे तो वो हमारे लिए और औरों के लिए भी सेफ रहता है, क्योंकि बारिश में वैसे भी थोड़ा धीमी गति में ही गाड़ी को चलाना चाहिए। तो चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे, और आपको बता देते हैं जल्दी से क्या है हमारे फोन नंबर्स। 0172 है चंडीगढ़ का एसटीडी कोड, और फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। और आपको अभी हम विषय बता ही रहे हैं, उतने में हमारे कॉलर्स की कॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं। तो देखते हैं कौन है आज के हमारे सबसे पहले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, और ये आते आते चले गए, और हमारे लिसनर्स हमें बहुत दूर दूर से भी कॉल लगाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हमसे नए नए लिसनर्स जुड़ें और हमसे बात करें। और हमारी यही आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो रेडियो से उचित दूरी बनाकर करें। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छा है, और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: जी राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ध्यान।
1: जी जी जी, तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बरसात में जब आप वाहन चलाते हैं, सबसे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जब बरसात में वाहन चलाते हैं सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, और दूसरा ये है कि जब राहगीर जैसे पैदल चलने वाली यात्रा है, धीरे धीरे क्या बोलते हैं गाड़ी चलाए, क्योंकि कई बार होता है जो बरसात का पानी जो है आदमी पर जो है छिड़क जाता है जब आप वाहन चलाते हैं, तो इसलिए वाहन को धीरे धीरे चलाए, भले ही आपको लेट हो जाए, लेकिन कभी आपको ये भी देखना होता कि कहीं हमारे रास्ते में कोई चल रहा है पैदल, तो इसलिए वाहन को धीरे धीरे चलाए। और सबसे बड़ी बात ये, कई बार आप म्यूजिक तेज वॉल्यूम में चला देते हैं बरसात के मौसम में, इसका उपयोग बिल्कुल न करें।
0: जी जी, और देखिए कई बार ऐसा भी होता है राकेश जी कि हम अपनी गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और कई बार छीट पड़ती है, और कुछ लोग हो सकता है पानी से बचने के लिए इधर उधर फिसल कर गिर भी जाए, है ना, उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती है।
1: जी जी जी, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो है बच्चे, कई बार बच्चे भी चल जाते हैं, कई बार स्कूली बच्चे जाते हैं, कई बार उनके पास बैग वगैरह सब कुछ होता है, ऐसे में अगर वाहन की जो चलाते हैं तो छीट पड़ जाते हैं पानी की, तो फिसल जाते हैं, तो चोट का भी सामना करना पड़ता है।
0: जी जी बिल्कुल, चोट का सामना भी करना पड़ता है, और बेचारा जो कोई जा रहा है उस पर कीचड़ गिर जाएगा, गंदा पानी गिर जाएगा, सोचिए हो सकता है वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, सकता है कोई बच्चा स्कूल जा रहा हो, कोई अपने ऑफिस जा रहा हो, है ना, तो हमें नहीं पता कि हमारी छोटी सी एक लापरवाही की वजह से किसी के साथ क्या बुरा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें जब भी हम रोड पर निकलें।
1: जी जी जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी कॉल के लिए।
1: जी धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी।
2: संदीता डोगरा बोल रही मैम।
0: जी कैसी हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक ठाक, हिमाचल से, है ना।
0: जी जी
2: जी मैम, आपके साथ बड़े टाइम के बाद बात हो रही
0: है। जी जी, बरसात में वाहन तो नहीं चला रही हैं?
2: आना जाना पड़ता है मैडम, बिल्कुल। हमारा घर हमीरपुर में है, और 3 टनल निकलते हैं, वहाँ भी मिट्टी और लैंडस्लाइडिंग, बट वहाँ कोई NH वाले खड़े होते हैं खुद।
0: तो राहगीरों का ध्यान, आप राहगीरों का ध्यान रखते हैं?
2: बिल्कुल मैम, सबसे पहली बात, क्योंकि जब हम 4-व्हीलर चला रहे हैं, कोई स्कूटर है, कोई साइकिल वाला है, कोई पैदल है, पैदल वाला नंबर 1 पे जैसे फॉरेन में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं
0: जी,
2: बट हमारे यहाँ पर ना उसको नहीं जानते, कुछ भी सोचते, पता नहीं, अब चाहे पैसे की बात नहीं होती है, दिमाग की सोच की बात है कि कोई पैदल चला है, कैसे ऑफिस जा रहा है, कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा है, और वहां पे एकदम, एक तो रोड टूटा होता है मैडम उस टाइम, तो लोग सडन बिल्कुल साइड से निकल लेते हैं
0: जी,
2: और कई बार उसी में टायर डाल देते हैं, छींटे उसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, मेरे ऊपर भी पड़े थे बड़े साल पहले
0: जी।
2: तो मैम वो सोच बिल्कुल खराब है, आपकी गाड़ी तो ब्रेक लगा सकती है ना, क्योंकि वो तो भाग नहीं सकता उसमें,
0: बिल्कुल,
2: उसको तो चलने के लिए जितना स्पेस है, जहाँ सूखा है थोड़ा सा, वहाँ पैर रखेगा तो निकलेगा, गाड़ी सामने से आ रही है,
0: बिल्कुल।
2: ऐसे काफी समझदार लोग होते हैं जो रुक जाते हैं, देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है
0: जी।
2: मैं तो मैम अपने हाथ से रोक देती गाड़ी को, मैं कहती रुको,
0: मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अगर मुझे कहीं रोड क्रॉस करना है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, सिग्नल कर दीजिए दूसरे व्यक्ति को कि थोड़ा धीरे कर लीजिए,
2: मैं बोलती

0: जाओ 2 मिनट
1: जी।
0: अगर कई बार मैम सामने वाला इधर हो रहा है लेफ्ट, वो भी, मैं भी लेफ्ट वो भी राइट, मैं भी राइट, तो मैं बोलती हूँ रुको अब जाओ
1: जी जी जी जी
0: इशारे देने हो
1: जी
0: ट्रैफिक वाले की तरह।
1: बिल्कुल
0: तो मैम
1: बिल्कुल।
0: ये सबसे गंदी आदत है, ये इनफैक्ट हमें ये जरूर समझना चाहिए, क्योंकि हम इतने लोगों तक ये आवाज जा रही है, अभी प्लेटफॉर्म ऐसा है रेडियो, लोग हर कोई अपना रेडियो चला के ही गाड़ी चलाते हैं। मेरे कितने सुनने वाले हैं जो सुनते हैं, बोलते मैम आपकी कॉल बात करते हुए लाइव सुना, मैं कहा मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी,
0: मैं तो 107.2 पे रहती हूँ, कि इसमें एड्स कम और काम की बातें ज्यादा है, ऐसे चैनल की अगर बात करूँ मैं तो
1: जी बिल्कुल।
0: तो जो ये टॉपिक आपने लिया बिल्कुल ठीक लिया मैम, और जैसे हम खुद गाड़ी जब तेज निकालते हैं मैम, अपने ऊपर भी शीशे पे गिरता है और सामने दिखता ही नहीं क्या है।
1: बिल्कुल।
0: फोर व्हीलर वाला भी ये सोच के चले कि खुद के को बचाएंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे, और कभी भी ऐसा काम ना करें जो राहगीर चले हुए हैं उनके कपड़े गंदे हों, ये सोच लेके चलो कि उसको क्या अभी क्या करेगा वो।
1: सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है, चाहे हम घर पे हों, बाहर हों, कहीं भी हो, है ना, हम सब एक परिवार की तरह ही हैं। तो बस यही समझिए कि अपना, आप ये भी समझ सोच सकते हैं कि अगर इसकी जगह मेरा बच्चा होता या मेरे घर का कोई होता तो उसे कैसा
0: या
1: लगता?
0: मैं खुद ही होता।
1: हाँ बिल्कुल
0: मैम
1: जी।
0: तो ये प्लीज ध्यान रखें बरसात में, और ज्यादा हिमाचल भी ना जाए आजकल मैम, लैंडस्लाइडिंग बड़ी, और चंबा में भी ऐसे हैं बेवजह घूमे ना लोग ना, थोड़ा मौसम की वेट कर लें ठीक होने की, बारिश की ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हिमाचल से हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, सबकी सबके लिए गुड लक। थैंक
1: जी
0: यू मैम,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, धन्यवाद,
0: वेलकम मैम।
2: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
3: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
2: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
3: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
2: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
3: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
2: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और कार्यक्रम में आज हमारा विषय है बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ध्यान. हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत. अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताएं.
2: हेलो.
1: हेलो
2: मैडम नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
2: मैडम मैं प्रदीप शिमला संकट मोचन से बात कर रहा हूँ.
1: प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका.
2: थैंक यू मैम.
1: जी क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी आज.
2: मैडम मैं तो ये बोलूंगा कि बरसात के मौसम में जो गाड़ी को है ना बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए, और पैदल चलने वालों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए.
1: जी.
2: और गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी चाहिए जहाँ पर पानी काफी होता है, ताकि पैदल चलने वालों पर पानी ना पड़े.
1: जी.
2: गाड़ी को सीमित गति में ही चलाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं.
1: जी.
2: और बहुत से लोग अपने कार्यालयों में जा रहे होते हैं.
1: जी.
2: जिससे उनपे जो है वो मतलब वो गंदे छींटे पड़ जाते हैं उनके कपड़ों पर.
1: जी.
2: तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. तो बरसात के मौसम में ना मैडम जैसे रास्ते में गड्ढों का ध्यान नहीं आता है.
1: बिल्कुल.
2: क्योंकि बारिश में ये पता ही नहीं चलता कि गड्ढे कहाँ कहाँ पर है.
1: बिल्कुल.
2: तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए. अपना

0: की और दूसरे की भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी प्रदीप जी, और अगर हम बहुत सारी बातों की, एक बात यह है कि अगर हम गाड़ी की जो गति है उसे नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं, है ना। अगर कोई आगे से गाड़ी आ जाती है या कोई गलत तरीके से चला रहा है तो ब्रेक लगाकर एकदम से गाड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई गड्ढा आ गया है ना, तो उसको बचाते हुए हम दूसरे व्यक्ति को भी बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, हाँ, उसमें अपना भी बचाव है और दूसरे लोगों का भी बचाव होता है उसमें, इसलिए हमारे को गाड़ी चलाते हुए बरसातों में तो खास ये ध्यान रखना चाहिए मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
1: और श्रोताओं, जैसा कि हमारे अभी जो कॉलर है उन्होंने भी कहा कि बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे होते हैं, कोई अपने कार्यालय को जा रहा होता है, तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी से हम कुछ भी ऐसा गंदा पानी, कीचड़, कुछ भी पानी किसी दूसरे पर ना गिरने दें, और सावधानी से गाड़ी चलाएं। गति को नियंत्रण में रखकर अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हो जाता है। एक तो हम अपने आप भी सेफ रहते हैं और दूसरों को भी हम सेफ रख सकते हैं।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार दीदी
0: जी, अपना नाम अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ दीदी, आज का प्रोग्राम कहा है दीदी?
0: आज प्रोग्राम का विषय है बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ध्यान, और हमारी बात किससे हो रही है ये भी बता दें।
1: अच्छा दीदी, मैं तो वैसे तो सच्चन पंचकूला में और होटल में जो हम तो काम करता हूँ, लेकिन तो हम गांव में हूँ छुट्टी पे, तो इसीलिए वो जो है।
0: और इनकी कॉल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आ रही थी और इनकी कॉल फिर अंततः कट गई। और हमारे कॉलर हैं ये पंचकुला से, इनका कॉल लगा लेकिन कट गया। जी तो हम बात कर रहे थे वाहन चलाने की, वाहन सावधानी से चलाएं। चलिए इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

0: आपका तुरंत डिजिटल अप्रूवल 10 साल तक की अवधि आकर्षक ब्याज दरों के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम, इस समय आप आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से सुन रहे हैं। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम सुमन है जी।
1: जी सुमन जी, स्वागत है आपका। अपने रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर लें और रेडियो से थोड़ी दूरी बना ली सुमन जी।
2: नाम जी। हाँ जी
1: जी सुमन जी, कहाँ से बात कर रही हैं।
2: मैं जी हरियाणा वीर घग्गर से बात कर रही हूँ, पंचकुला।
1: अच्छा सुमन जी, अभी भी आपकी आवाज़ जो है ना वो गूंज रही है, ऐसे आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी और बातचीत ढंग से नहीं हो पाएगी। आप थोड़ी सी दूरी बना लें रेडियो से।
2: ठीक है जी, हाँ जी मैम।
1: जी सुमन जी, अब कहिए, आपको हमारा आज का विषय पता है।
2: हाँ जी
1: जी, क्या कहना चाहती हैं सुमन जी। पहले तो ये बताएं, आप पहले भी कार्यक्रम में आपने शिरकत की है या पहली बार आप कॉल कर रही हैं।
2: मैम मैंने पहली बार बात की आपसे
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार से जुड़ने के लिए।
2: और हाँ जी।
1: बड़ा अच्छा लगता है जब नए लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे परिवार से जुड़ते हैं।
2: हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: बहुत ज्यादा रेडियो सुनती हूँ मैं, बचपन से ही मुझे शौक है।
1: अच्छा, रेडियो आपका भी साथी है।
2: हाँ जी
1: हमारी तरह रेडियो आपका भी साथी है।
2: हाँ जी बिल्कुल
1: जी जी। तो सुमन जी, आज क्या कहना चाहेंगी, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं।
2: मैं जी सही के बारे में, जैसे आप बात कर रहे थे, वो सही में हमें बहुत ध्यान से चलना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए आसपास, और गाड़ियां भी जब सड़कों पे चलाते हैं सभी तो बहुत ध्यान से चलाना चाहिए, और पानी में नहीं चलाना चाहिए, जब किसी के ऊपर गिरता है तो अच्छा नहीं लगता
1: जी।
2: और गंदे पानी से फिर बीमार होते हैं लोग, बच्चे भी, और ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, साफ सफाई रखनी चाहिए, और वाहन चलाने में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए
2: जी।
1: जी जी सुमन जी, और कुछ कहना चाहेंगे।
2: नहीं जी, बस जी। मैं पहली बार बात कर रही हूं आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी। और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, और हमसे बार बार जुड़िएगा, फिर से जुड़िएगा। इस कार्यक्रम में भी आप कॉल कर सकती हैं, और भी हमारे अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें आप अपनी फरमाइश भी हमें भेज सकती हैं
2: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, धन्यवाद। श्रोताओं, आज हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल। और आपको अपने फोन नंबर्स बता दें, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172, नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं इस विषय पर।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: शिवा तिवारी
0: जी। और शिवा जी का कॉल एक बार फिर से कट गया है, आज इनके कनेक्शन में लगता है कुछ दिक्कत चल रही है। तो शिवा जी, आप किसी और नंबर से कॉल लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉल पहले भी आई थी, हम तो आपकी आवाज़ पहचानते हैं, और फिर से आपकी कॉल कट गई। जी, और लगता है आज कॉलर्स की कॉल्स में कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि आते आते कॉल कट जा रही है। एक और कॉल आई है, देखते हैं कौन है ये कॉलर। आप सुन रहे हैं हेलो हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार,
1: मैं रामवीर बोल रहा जी, गांव फिर मस्ते जी।
0: रामवीर जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी।
0: जी,
1: और मैंने और ट्रांजिस्टर अभी अभी खोल है दीदी। विषय क्या है जी आज का?
0: कोई बात नहीं जी, आज विषय जो है वो है, बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ध्यान।
1: हाँ दीदी, देखिए कोई भी अब सावधानी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलने वाले यात्री भी हमारे जैसे ही होते हैं। हम बेशक से गाड़ी लेकर चल रहे हैं, लेकिन इंसान तो इंसान है दीदी।
0: बिल्कुल,
1: सबकी जिंदगी बराबर समझनी चाहिए, और अपने से ज्यादा समझेंगे तभी हम किसी को पाएंगे।
0: जी बिल्कुल, सब सबको अपनी तरह अगर हम समझेंगे तो रामवीर जी, हम कभी ऐसा करेंगे ही नहीं कि किसी के ऊपर गंदा पानी डालकर चले जाएं, है ना?
1: सब परमात्मा की ओर से तो सब बराबर हैं दीदी, लेकिन चलो हम सोच लेते हैं कि हमारे पास ये है तो दूसरा गरीब है, लेकिन नहीं, गरीब कोई नहीं है, इंसान सब बराबर है। कोई क्या हुआ, कोई थोड़ा पैसा ज्यादा किसी के पास है, लेकिन परमात्मा की ओर से तो जल वायु प्राण वायु सबके लिए बराबर है, और एक सूरज जो है हमें प्रकाश देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये इस भाव से अगर चलेंगे ना रामवीर जी, अगर हम सड़क पर इस भाव से निकलेंगे कि हम सब समान हैं और भगवान ने हम सबको एक सा बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के साथ कुछ भी गलत करेगा, है ना? जी जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके रामवीर जी, बहुत बड़े अच्छे विचार हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के, और आपने कॉल के लिए किया हमें आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद। और कितनी अच्छी बात कही रामवीर जी ने कि हम सब एक समान हैं, भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है, और अगर हम ये सब अपने दिल में ये बात सोचकर घर से निकलें कि वो दूसरा व्यक्ति जो है, हमें बहुत ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी दूसरे इंसान के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, अपनी एक राय बना लेते हैं, तो वो राय भी शायद ना बने, और हम दूसरों का हर जगह फिर ख्याल रखेंगे, चाहे फिर वो रोड हो, हमारा ऑफिस हो, स्कूल हो, या जहाँ पर भी हम काम करते हैं। अगर हम ये सोच लें कि सब हमारे जैसे ही हैं, तो फिर देखिए आपका दिन भी अच्छा निकलेगा, दिल भी खुश रहेगा, और हाँ, बारिश में जब आप वाहन चलाएंगे तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी, है ना? क्योंकि

वहाँ पर भी हम अपना पेशेंस खो देते हैं कि ये सामने वाला गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है, जबकि हमें कई बार ये भी पता होता है कि सामने रेड लाइट है भाई, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बावजूद कुछ लोग हॉर्न करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं, ये बिना सोचे समझे कि अगर आगे रेड लाइट है तो आगे वाला तो गाड़ी बढ़ा ही नहीं सकता, तो आप कहाँ चले जाएंगे। इसलिए जब भी हम गाड़ी चलाएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना, और अगर हम कंपैशन रखकर अपने दिल में चलेंगे, यानी सबके लिए समान भाव रखें, प्यार रखें, तो शायद हमारा दिन भी अच्छा होगा और हमारा जीवन भी और अच्छा हो जाएगा।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत। हेलो
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: बंसीलाल है जी, अम्बाला से।
0: जी बंसीलाल जी, स्वागत है आपका।
1: गांव तेजा मोड़ी है हमारा
0: जी। तेजा मोड़ी गांव से बंसीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज?
1: ये जो ट्रैफिक के बारे में, सड़क में पानी पूरी हो जाता है
0: जी, कि सड़क में जब हम गाड़ी चलाते हैं बारिश में तो ध्यान से चलाएं, और जो रास्ते पे जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखें।
1: हाँ, जिसका पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पर चल रहे है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप कार में बैठे हैं, उसकी स्लो स्पीड रखें
0: जी,
1: पानी से बचा कर निकालें। सबका ध्यान रखो
0: जी।
1: अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी ना दो।
0: वाह क्या बात कही है आपने, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख ना दे। बिल्कुल,
1: आप भी सुखी रहो, दूसरे को भी सुखी रखो
0: जी।
1: तभी तभी संसार सुखी होएगा
0: जी।
1: जी
0: जी, शुक्रिया बहुत बहुत कॉल के लिए।
1: ठीक है, तो मैं यही बात है सबकी।
0: जी जी बिल्कुल यही बात है। और
1: थैंक यू जी, थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हेलो,
0: स्वागत है आपका हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं।
2: मैं डॉक्टर आईपी नागी बोल रहा हूं जी, चंडीगढ़ से।
0: जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद जी। क्योंकि सुन रहा था आज जो टॉपिक आपने रखा है बरसात में, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए
0: जी
2: ट्रैफिक चलाने वालों को, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। एक दूसरे की गाड़ी में डिस्टेंस बना के चलना चाहिए
0: जी,
2: क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रोड पे स्लिपरी भी हो जाता है तो आपस में एक्सीडेंट होने का खतरा होता है।
0: बिल्कुल।
2: दूसरा, कभी कभी सड़कों पे ना वाटर लॉगिंग हो जाती है
0: जी,
2: उस वाटर लॉगिंग में यदि कार वाले हैं तो उनको स्लो चलना चाहिए, टू व्हीलर वाले यदि और पैदल वाले चल रहे हैं तो उनके ऊपर कीचड़ उछलता है।
0: बिल्कुल,
2: वो बहुत बुरा लगता है। वो कभी कभी क्या सोचते होंगे कि अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमें भिगा के चले गए या हमसे कीचड़ बीच उछाल दिया।
0: बिल्कुल।
2: तो इस तरीके से बरसात के समय पे प्रिकॉशंस हमें लेके चलना चाहिए
0: जी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने और भी ऐड किया जो कहीं मिस हो रहा था, कि हमें डिस्टेंस बनाकर चलना चाहिए
2: जी
0: जी, जिससे हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं
2: जी जी। क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस ना कभी कभी मिस मैच हो जाता है। हम जब नॉर्मल में चल रहे होते हैं तो फोकस आईज का कुछ और कहता है, जब बरसात में चल रहे होते हैं तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है
0: जी। बिल्कुल, हमें पानी भी देखना पड़ता है कि कहीं ज्यादा पानी तो नहीं भरा है उस तरफ से ना निकाले, है ना, और गड्ढे ना हो कहीं, और दूसरे के साथ भी हमें डिस्टेंस देखकर चलना पड़ता है।
2: बिल्कुल
0: जी। डॉक्टर नागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बात करके
0: जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
1: सत
0: जी सत श्री अकाल जी, अपना शुभ नाम बताएं और रेडियो से थोड़ी सी दूरी बना लें
1: श्री
0: जी। पवन जी क्या कहना चाहेंगे?
1: अकाल जी। शादी
0: जी
1: कोई ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਡਿਆ।
0: हेलो। और पवन जी की कॉल बात करते करते कट गई बीच में ही जी। और यही कह रहे थे कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी जानबूझकर दूसरों को ऐसा गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनको खुद से पहले रखते हैं। यही उनके कहने का जो था वो भाव था।

और श्रोताओं, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम अब यहीं पर होता है संपन्न। आज हमने बात की बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ध्यान इस विषय पर। और जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ഹലോ
1: ഹലോ
0: കുച്ച് ആപ്കി കുച്ച് ഹമാരി ബാത്തേ പ്യാരി പ്യാരി ഹലോ ചണ്ഡിഗഡ്
1: ഹലോ ചണ്ഡിഗഡ്
2: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: और लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़ियां।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।

0: श्रोताओं, आज का कार्यक्रम एक विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन पर निर्भर है। आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज बहुत जल्दी तरक्की किए जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जवानों और विद्यार्थियों की बदलती सोच पर है, जिसकी बदौलत हम हमारे जीवन में आने वाले समय में जल्द ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब का एक दूसरा पहलू भी है जो आज हमें कहीं ना कहीं मायूस कर रहा है। आइए बढ़ते हैं आज के नाटक की ओर, जो कि हमें आज के विद्यार्थी के जीवन के उस दूसरे पहलू की ओर लेकर चल रहा है जो बहुत ही भयानक है। तो आइए सुनते हैं पीहू के जीवन के बारे में और उस भयानक पहलू के बारे में।
1: पीहू बेटा, जल्दी करो, स्कूल जाने में देरी हो रही है।
2: बस आई पापा, बस टिफिन लग ही गया।
1: मैं समझ सकता हूँ बिटिया, तेरी मजबूरी।
2: चलो भी पापा, देर हो रही है, कहीं आज फिर से लेट हो गए तो टीचर जी आज फिर से सजा देगी मुझे।
1: हाँ हाँ, बस बैठ साइकिल पर जल्दी। ले आ गया स्कूल, आज सिर्फ 2 ही मिनट लेट हुए हैं।
2: हाँ बाय पापा, आप जाओ, मैं ट्यूशन के बाद शाम को मिलती हूँ आपसे।
1: समय पर खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना बिटिया।
2: जी पापा।
3: पीहू बेटा, आज फिर से लेट हो गई तुम।
2: वो मैडम, वो क्या है ना, आज फिर से मेरी आंख नहीं खुली तो सुबह खाना बनाने में समय लग गया।
3: मैं जानती हूँ पीहू बेटा, तुम्हारी माँ के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ तुम ही संभालती हो।
2: मैं आगे से ध्यान रखूंगी और ऐसा फिर से नहीं होगा।
3: तुम एक होनहार बच्ची हो, अभी तक कक्षा में तुम्हारा 3rd से कम रैंक नहीं आया। तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हो और साथ में पढ़ाई भी, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ।
2: आप चिंता ना करें, इस बार मैं 2रा स्थान लाऊंगी कक्षा में।
3: 2रा क्यों?
2: वो मैं,
3: मेरी स्टूडेंट पीहू 1रा स्थान लाएगी।
2: हाँ जरूर मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी 1रा स्थान लाने की।
3: बहुत अच्छा, चलो कक्षा में चलो।
4: अरे पीहू, जल्दी आके बैठ, इससे पहले कि वो पिंकी आ जाए और हमारे पास बैठे।
2: अरे यार नगमा, तू पिंकी से इतना जल्दी क्यों है?
4: पता नहीं क्यों, पर वो हम दोनों के पीछे पड़ी रहती है, जब देखो उसके कान

0: हमारी बातों पे लगे रहते हैं।
1: छोड़ना यार।
0: सुन, आज शायद मैं स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं आ पाऊंगी, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है थोड़ी।
1: क्या हुआ आंटी को?
0: बस यार, यही मौसम की वजह से थोड़ा सा बुखार आ गया है।
1: चल एक काम करते हैं, आज मैं स्कूल के बाद तेरे साथ तेरे घर चलूंगी।
0: अरे नहीं नहीं।
1: अब क्या हुआ?
0: तेरे पापा को पता चलेगा तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी।
1: मतलब क्या मैं आंटी से मिलने भी नहीं आ सकती?
0: वो बात नहीं है यार, तेरे पापा तेरी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हैं।
1: हाँ वो तो है यार।
0: अगर उन्हें पता चला कि तूने मेरी वजह से आज का ट्यूशन छोड़ा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे।
1: ठीक है, मैं अकेली ही जाऊंगी ट्यूशन।
0: अच्छा सुन, और जो भी पढ़ाया वो मुझे कल आते ही बता देना।
2: आ गई पीहू बेटा।
1: जी पापा, ये क्या बना रहे हो आप?
2: सोच रहा था आज पीहू को मेरे हाथों का बना खाना खिलाऊं।
1: वाह पापा, मेरे पसंद की आलू टमाटर की सब्जी।
2: हाँ, जब से तेरी मम्मी का देहांत हुआ है, इन 3 सालों में तूने घर को अपनी मम्मी की तरह संभाल लिया है।
1: पापा आप फिर से?
2: मैं उदास नहीं हूँ बेटा, लेकिन इस बार तेरी 10वीं के पेपर है और तुझे अपना ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए।
1: पर पापा वो तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ।
2: इसलिए अब से शाम को घर और खाने की जिम्मेदारी मेरी, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे।
1: ठीक है पापा।
2: इस बार तुझे अपने गांव में पहला नंबर लाना है, दूसरा या तीसरा नहीं।
1: पर पापा।
2: पर वर कुछ नहीं, तू कहे तो तेरी ट्यूशन मैडम से बात करूँ, वो तुझे अलग से पढ़ाए।
1: नहीं ठीक है पापा, मुझे उनका पढ़ाया एक बार में समझ आ जाता है।
2: फिर ठीक है, अगर तुझे थोड़ी भी तकलीफ लगे तो तुरंत मुझे बताना, मैं तेरा ट्यूशन ही बदल दूंगा। लेकिन तू अपने लक्ष्य से भटकना नहीं, पहला मतलब पहला।
1: हाँ पापा पहला।
2: चल आजा खाना खा ले, फिर तुझे पढ़ना भी होगा ना।
1: बस अभी हाथ मुँह धोकर आई।
0: क्या बात है पीहू, आजकल तू बड़ी चुपचाप रहने लगी है।
1: क्या बताऊं तुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं।
0: क्या करूं मतलब?
1: जब से पेपर के दिन नजदीक आ रहे हैं तब से मुझसे पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है।
0: अरे तू पढ़ाई की चिंता की वजह से कह रही है, तू तो बिना पढ़े भी परीक्षा देगी तो फर्स्ट ही आएगी।
1: इसी बात का डर है मुझे कि मुझ पर सब इतना विश्वास करते हैं, लेकिन अगर मैं परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाई तो मेरे पापा का और टीचर जी सब मुझ पर किया विश्वास टूट जाएगा।
0: तू चिंता ना कर पीहू, अच्छा ही होगा, तू बस ज्यादा सोच रही है।
1: चल घर चलते हैं।
0: हाँ आज तू मेरे घर चल, हम दोनों वहीं पर मिलकर पढ़ाई कर लेंगे और तेरा मन भी लग जाएगा।
3: क्या बात है मनोज भाई साहब, आज अकेले क्यों बैठे हो आंगन में?
2: वो पीहू बिटिया के पेपर आ रहे हैं ना, तो वो अपनी सहेली के यहाँ गई है पढ़ने के लिए, इसीलिए अकेला ना लगे बाहर बैठ गया।
3: वाकई मनोज भाई, पीहू बिटिया है ही इतनी होनार कि देखना इस बार पूरे गांव का नाम रोशन करेगी।
2: ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है पीहू से।
3: इस बार गांव में मिठाई बंटवाने की तैयारी कर लेना, चलो मिलते हैं फिर।
2: अरे पीहू बिटिया आ गई तुम।
1: हाँ पापा।
2: अच्छे से पढ़ाई की ना तुमने आज?
1: जी मैं थोड़ा थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ।
2: हाँ बेटा मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा, तुम सुबह पढ़ लेना और हाँ दूध जरूर पी लेना सोने से पहले।
1: जी पापा।
2: आप तो दिन गिनना शुरू कर दो बस।
1: मैं आज ट्यूशन नहीं जा रही पापा।
2: क्यों बिटिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, 2 दिन बाद मेरी परीक्षा है तो सोच रही हूँ घर पर रहकर ही पढ़ लूँ।
2: ये तो तूने बहुत सही सोचा बिटिया, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी घर का सारा काम मैं देख लूंगा।
1: पापा वो मैं।
2: क्या हुआ बिटिया?
1: कुछ नहीं पापा, मैं चलती हूँ अपने कमरे में।
2: ठीक है।
0: नमस्ते अंकल जी।
2: नमस्ते नमस्ते नगमा बिटिया, और पढ़ाई कैसे चल रही है?
0: जी अच्छी चल रही है।
2: देखना इस बार तुम्हारी सहेली पहला नंबर लाएगी पूरे गांव में।
0: जी वो तो है, पर आज वो ट्यूशन भी नहीं आई। सब ठीक तो है ना, कहीं उसकी तबीयत।
2: अरे अब तो वो घर से पढ़ेगी, 2 दिन ही तो बचे हैं, घर रहेगी तो ज्यादा पढ़ पाएगी।

0: मेरी मानो तो तुम भी अब घर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो।
1: नगमा आई है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, माँ को तो खो दिया, अब पिता के विश्वास को टूटते हुए नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना होगा।
2: पीहू परीक्षा के दबाव और पिता की इज्जत को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगी कि उसने पहले तो परीक्षा ना देने का निर्णय लिया और फिर जिंदगी की परीक्षा से नाता तोड़ लेने का निर्णय लिया। परीक्षा से एक दिन पहले पीहू सारी रात सो ही नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे आसान लगा तो बस एक परीक्षा कम करना। उसने अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने मन की बात लिखी और माँ की साड़ी से अपने आप को पंखे से लटका दिया। सुबह देर तक दरवाजा ना खोलने पर पीहू के पिता को शक हुआ। उसने गांव वालों को बुलाया और कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाने पर देखा तो पीहू की लाश पंखे पर लटक रही थी। पीहू के पिता के पैरों के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई। वो पीहू को इस हालत में देखकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने पीहू की लिखी चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस दौड़ में नहीं दौड़ पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं हार गई तो आपसे और उन सब से जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए पापा।

0: श्रोतो, हमारे देश में हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है, और हाल ही में देखा जाए तो राजस्थान की दौसा की रहने वाली खुशबू ने भी ज़्यादा अंक लाने के दबाव में परीक्षा में हारने से ज़्यादा जिंदगी में हारना आसान समझा और एक और जिंदगी हार गई। ये घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम बच्चों को आगे बढ़ाने, अच्छा नंबर लाने के मामले में इतना बढ़ गए हैं कि पढ़ाई के साथ जिंदगी के मूल्य को समझाना भूल गए हैं। इस कदर बढ़ती हत्याओं को रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि बच्चों को शिक्षा के महत्व के साथ साथ जिंदगी के महत्व की भी उतनी ही शिक्षा दी जाए, ताकि पीहू, खुशबू और ना जाने कितने विद्यार्थी हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार हुए बैठे हैं और अपनी जान गवा बैठे हैं। इन सभी को जागरूक करना आवश्यक है, साथ ही माता पिता की भी काउंसलिंग कर उनमें जागरूकता पैदा करना, और साथ ही छात्रों को ये समझाना होगा कि एक नाकामी जीवन में सब कुछ नहीं होता। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सभी सचेत रहें कि पीहू या खुशबू हमारे आसपास ना हो और ना ही हम इतना दबाव बनाए विद्यार्थियों पर।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।

5555। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st August 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
0: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर, और श्रोताओं अब समय हो गया है कार्यक्रम सुर बहार का। सुर बहार कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को शालिनी का प्यार भरा नमस्कार। आज के सुर बहार में कुछ गैर फिल्मी रचनाएं।

0: इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं।
1: ये गीत जो अभी आपने सुना ये था ढांडा न्योली वाला और एक्सवीर ग्रेवाल की आवाज़ों में, और ये गीत स्नेहा शंकर की आवाज़ में।

0: तो दोस्तों, ये था आज का सुर बहार कार्यक्रम और इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: 11:30 हुए हैं और ये समय है हमारे कार्यक्रम संजीवनी का।
2: संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अनिल पुंज का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री देव फोंदनी, आयुर्वेदाचार्य। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और टॉपिक जो हमने चुना है वो चुना है ऋतुचर्या। ये क्या है और किस तरह से ऋतुचर्या को हमें निभाना चाहिए और ऋतुचर्या एक अच्छी सेहत के लिए किस तरह से काम करती है, इन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर श्रीदेव फोंदनी, प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद सर।
2: आज इस प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा कि ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। ऋतुचर्या के बारे में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन इसके असल में मायने क्या है, ऋतुचर्या का मतलब क्या है, ये समझाइए पहले तो।
3: जी, आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है। ऋतुचर्या दो शब्दों से बना है, एक है ऋतु और एक है चर्या। ऋतु का अर्थ है सीजन और चर्या का अर्थ है रेजिम,
2: दिनचर्या जो हमारी।
3: जी, जैसे दिनचर्या होता है ना कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ऐसी सीजन में हमारा रूटीन और हमारा रेजिमेन क्या होना चाहिए उसके बारे में ऋतुचर्या है।
2: हर रोज जो हमारी दिनचर्या वो तो है, लेकिन मौसम के मुताबिक क्या होनी चाहिए वो ऋतुचर्या है।
3: जी जी जी, बिल्कुल। अपने जीवन में देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार हमें बदलना होता है, आचार और विचार बदलना होता है। लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में और कन्वीनियंस में जाने के कारण समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऋतुचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं। जब हम ठंड में जाने के लिए होते हैं तो हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, उस तरह की तैयारी कर लेते हैं। जब हम गर्मियों में आने होते हैं तो अपने एसी कूलर को तैयार कर देते हैं। वर्षा ऋतु में जाने के लिए होते हैं तो उस हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन ये तैयारी बहुत स्थूल है, बहुत मैक्रोस्कोपिक है। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तैयारी होनी चाहिए उसमें हम बहुत लैग कर रहे हैं,
2: तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे।
3: मैं जैसे इसको ये कहूंगा कि हम एक तरह से वेस्टर्नाइज्ड जो हमारा कल्चर हो गया, जो पैकेज्ड फूड वाला कल्चर है कि आप किसी भी जगह पर हो,
2: समय किसी भी वक्त कुछ भी,
3: दुनिया के किसी भी कोने पर हो, आपने एक ही जैसा खाना खाना है। आप चाहे किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में रहें, बिना उस परिस्थिति और बिना उस वातावरण के समझ लिए हमें सब जगह एक ही जैसा भोजन करना है। मतलब यूनिफॉर्मिटी जो है इज नॉट गुड, है ना, क्योंकि परिस्थितियां अलग होती हैं, अग्नि अलग होती है, स्थान के अनुसार होती है। तो हमारा बस वही एक जो है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे ऋतु के अनुसार अपने आहार में परिवर्तन लाएं और अपने विहार में परिवर्तन लाएं। वही खाना खाना है, वही आप ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि वो पैकेज्ड है, है ना, उनका सिस्टम कन्वीनियंस है, कंफर्ट है। परंतु इसमें सीजन यानी ऋतुचर्या की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से उसकी डेफिशिएंसी है, लैकिंग है।
2: स्वाभाविक है कि बात हमारे देश में होती होगी, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई बात है। तो क्या वास्तव में हम भारतीय इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
3: हम इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे बिना समझे किसी काम को हम करते हैं। 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ। सामान्यतः अगर हम उत्तर भारत की तरफ बात करें तो सभी 6 ऋतुएं जो है हम जनरली देख लेते हैं, परंतु दक्षिण भारत की तरफ सामान्यतः 3 या 4 ऋतुएं ही होती हैं। लेकिन वो देशकाल परिस्थिति के अनुसार आयुर्वेद के जो संहिताकार हैं उन्होंने कहा है कि जैसी भी ऋतु जहाँ पर है उसके अनुसार ही अपने अपनी ऋतुचर्या रखनी।
2: क्योंकि आपने कहा कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं।
3: जी,
2: दक्षिण भारत में 3 होती हैं,
3: सामान्यतः 3 से 4 ऋतुएं ही वहाँ पर,
2: यहाँ पे 6 होती हैं।
3: जी,
2: तो उन 6 के बारे में बात करेंगे।
3: जी, तो 6 ऋतुओं का अगर मैं आपको नाम देता हूँ तो ये है, सबसे पहले आपकी जो, अगर हम हमारा जो नव वर्ष, जो हमारा वर्ष की शुरुआत होती है वो मार्च अप्रैल का होता है, जैसे हम चैत्र वैशाख इस तरह से हमारे उसमें कहा जाता है उस महीनों के नाम को,
2: जबकि हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस जनवरी के पहले दिन होती हैं या उससे एक दिन पहले।
3: लेकिन हमारे जो

0: पूर्वज थे वो ऋषि थे, ऋषि अर्थात वैज्ञानिक थे। तो उनकी प्रकृति की जो समझ थी वो बहुत गूढ़ थी, सूक्ष्म थी, इसलिए उन्होंने प्रकृति के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार खान पान के सिद्धांत बनाए। अगर मार्च और अप्रैल का आप महीना पकड़ते हैं तो ये जो है वसंत ऋतु का समय होता है। मार्च और अप्रैल का समय जो होता है,
1: मार्च अप्रैल का जो महीना है, हाँ, वो वसंत ऋतु का,
0: वसंत ऋतु का समय होता है ना। अब अलग अलग ऋतुओं में हमारे जो भीतर के दोष हैं, वात पित्त कफ, ये तो जन सामान्य भली भांति परिचित है। और वात पित्त कफ को ऋतुओं से क्यों कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो इसके लिए मैं एक श्लोक अक्सर मैं कोट करता हूं, आदान विसर्ग विक्षेप सोम सूर्य अनिल तथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिला तथा। अर्थात जैसे बाहर की सृष्टि में सूर्य है, वायु है, सोम है, चंद्र है,
1: जी,
0: उसी प्रकार के हमारी भीतर की सृष्टि में कफ है, पित्त है और वायु है। अब सूर्य क्या करता है, सूर्य ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सूर्य जो है पित्त है, तेज है, अग्नि का प्रतीक है,
1: बिल्कुल सही है,
0: है ना। जो वायु है वो क्या करती है, विक्षेप करती है, किसी भी वस्तु को, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वो एक माध्यम है
1: जी।
0: हमारे शरीर में भी वही वायु कार्य करती है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और चेष्टा वायु के बिना तो संभव ही नहीं है
1: जी,
0: है ना। तीसरा कार्य है कफ का। कफ क्या करता है, कफ निर्माण करता है, घनता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, जिसको हमने चंद्र से कोरिलेट किया है। तो बाहर की सृष्टि
1: वैज्ञानिक दृष्टि है और कितनी वैज्ञानिक ये
0: सोच है। और मैं वही कह रहा हूँ, वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो वास्तविकता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। हालांकि आजकल के लोग मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में या वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में अक्सर उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट का कह देते हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है, आज मैंने अपने स्टेटस पे लिखा भी है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट अल्टरनेटिव मेडिसिन, दे आर द ओरिजिनल मेडिसिन, दे आर द ओरिजिनल मेडिसिन। क्यों, इसका कारण यह है कि हम प्रकृति का ही हिस्सा है, हमारा निर्माण प्रकृति में हुआ है, किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ है। इसलिए जो जो बाह्य प्रकृति में होगा वही हमारे भीतर की प्रकृति में भी होगा। और जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, जो आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे महा जो स्कॉलर हैं, उन्होंने इस बात को भली भांति समझा कि प्रकृति और हमारे बीच में क्या संबंध है, और उसके अनुसार ही उन्होंने ऋतुचर्या, दिनचर्या, अग्नि बल, व्याधि बल, देह बल, इन सभी चीजों की कल्पना की और उसके आधार पर उन्होंने चिकित्सा। तो ऋतु दो प्रकार से हमारे यहाँ वर्गीकृत क्लासीफाई की गई है, एक है विसर्ग काल है और एक आदान काल है। विसर्ग काल को हम कहते हैं दक्षिणायन और आदान काल को कहते हैं उत्तरायण। दक्षिणायन में हम तब कहते हैं जब सूर्य का बल धीरे धीरे कम होता है और चंद्र का बल बढ़ता है। अर्थात सूर्य का बल जब कम होता है तो हमारे शरीर का बल बढ़ता है, है ना, तो उसको हम कहते हैं विसर्ग काल। और आदान काल जो उत्तरायण है उसमें सूर्य का बल धीरे धीरे पड़ता है। तो आदान काल में हम जिन ऋतुओं को मानते हैं वो ऋतुएं होती हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये जो ऋतुएं होती हैं इसमें आप धीरे धीरे, ग्रीष्म जैसे के नाम से समझ में आ रहा कि गर्मी है,
1: गर्मी का मौसम
0: है ना। अब शिशिर क्या है, शिशिर आप समझ लीजिए ये है जब आपका अर्ली फेज ऑफ विंटर है।
1: अच्छा,
0: अर्ली फेज ऑफ विंटर है आपका, तो ये है शिशिर,
1: जब सर्दी आने को है।
0: जी जी जी,
1: उसकी आहट हो चुकी है
0: जी,
1: जब हल्की हल्की ठंड महसूस हो
0: आप लगी। इसको कह सकते हैं नवंबर दिसंबर, ठीक है, अर्ली फेज ऑफ विंटर। फिर आपका जो शिशिर के बाद आपका वसंत आ जाता है, तो आपका शिशिर से पहले का जो है वो है हेमंत। हेमंत वास अर्ली फेज, शिशिर वास लेट फेज, देन वसंत एंड देन ग्रीष्म। ये ऋतुएं इस तरह से कनेक्टेड है। तो हमारा जो आप देखेंगे नवंबर दिसंबर का फेज है, दिसंबर जनवरी का फेज है, मार्च और अप्रैल का फेज है। तो जनवरी और फरवरी का जो फेज है हमारा, वो हमारा है शिशिर का फेज है
1: जी,
0: ठीक है जी। और मार्च और अप्रैल का जो फेज है वो है वसंत का फेज, और मई और जून का जो फेज है वो है ग्रीष्म का फेज। तो अब आप इस तीनों में देखिए कि हमारे यहाँ होता क्या है, जनवरी और फरवरी में कैसा होता है, बहुत ठंड होती है ना,
1: धुंध होती है,
0: धुंध होती है, बहुत ठंड होती है। आप अगर देखेंगे मार्च और अप्रैल में कैसा होता है, वसंत होता है, ठंड अपेक्षाकृत कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है, गुनगुनी
0: से ठंड हो जाती है ना। और उसके बाद लेकिन सूर्य का बल थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अगर आप देखें ना, उस समय हमारा होली का भी त्यौहार होता है, हम उसको भी उस समय मनाते हैं। और उसके बाद फिर आपका मई और जून का सीजन होता है जब उसमें आपको पूरी तरह से ग्रीष्म, यानी सूर्य का बल बढ़ता है। अब हमारे आचार्यों ने जब ये प्रकृति में ऋतुओं का चेंज देखा तो उसके अनुसार उन्होंने हमें कहा कि ऐसा नहीं है कि आपका शरीर इन चीज़ों से निष्प्रभावित रह जाएगा। जैसे वर्षा ऋतु में जो है वात प्रकोप का काल है,
1: जैसे आज
0: जो कि इस समय चल रहा है, और मैं स्पेशली
1: वात प्रकोप,
0: वात का प्रकोप होता है, तो आयुर्वेद
1: मतलब में वात आपके ज्यादा बनती है,
0: बन जाती है,
1: बन जाती
0: है ना। तो मैं उसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि वर्षा ऋतु वात प्रकोप का काल है
1: जी,
0: शरद में जो है पित्त का प्रकोप होता है
1: जी,
0: ठीक है ना जी। और जो वसंत ऋतु है वह है कफ प्रकोप का काल
1: जी।
0: अब ये हालांकि संचय, प्रकोप और प्रशम, ये तीन अवस्थाएं हैं दोषों की। अगर कोई दोष जैसे वर्षा ऋतु में वात

0: प्रकोप हुआ है, तो एकदम से तो प्रकोपित हुआ नहीं है, उससे पहले उसका संचय भी होगा। संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना, जैसे डैम में पानी भरता है, इकट्ठा होता है, संचय होता है। जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका प्रकोप हो जाता है, और प्रकोप के बाद अगली अवस्था में, अगर उसको प्रकोप अवस्था में हमने आहार और विहार के माध्यम से नहीं रोका या ऋतु के अनुसार हमने आहार विहार नहीं किया, तो वो प्रसर अवस्था में हो जाता है, यानी अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थानों पर जाके व्याधि उत्पन्न करता है। लेकिन प्रकृति में क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से आपके भीतर दोष संचित भी होंगे, प्रकोपित भी होंगे, लेकिन अगर आपने आहार विहार का पालन किया तो वो प्रशमित भी हो जाएंगे। तो यानी वही बात जो ग्रीष्म ऋतु में संचित होता है वो वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो जाता है, और अगर आप अच्छे आहार विहार का पालन करेंगे तो शरद ऋतु में उसका प्रशमन भी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर हमने आहार विहार का पालन नहीं किया तो उसका प्रशमन नहीं होगा, उसका प्रसार हो जाएगा, यानी वो अपने स्थान से निकल के दूसरे स्थानों पे जाके व्याधि उत्पन्न करेगा।
1: मतलब सभी ऋतुओं में अपने आप को एक तरह की बैलेंसिंग करने के लिए ये चीजें बनाई।
0: जी। तो यही अब जैसे इस समय अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की,
1: तो डॉक्टर साहब यहाँ रुकेंगे
0: जी,
1: क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है, इसका भी अपना एक

0: व्याधि उत्पन्न करता है। लेकिन प्रकृति में क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से आपके भीतर दोष संचित भी होंगे, प्रकोपित भी होंगे, लेकिन अगर आपने आहार विहार का पालन किया तो वो प्रशमित भी हो जाएंगे। तो यानी वही बात जो ग्रीष्म ऋतु में संचित होता है वो वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो जाता है।
1: जी, जी,
0: और अगर आप अच्छे आहार विहार का पालन करेंगे तो शरद ऋतु में उसका प्रशमन भी हो जाएगा, शांत हो जाएगा,
1: शांत हो जाएगा,
0: आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमने आहार विहार का पालन नहीं किया तो उसका प्रशमन नहीं होगा, उसका प्रसार हो जाएगा, यानी वो अपने स्थान से निकल के दूसरे स्थानों पे जाके व्याधि उत्पन्न करेगा।
1: मतलब सभी ऋतुओं में अपने आप को एक तरह की बैलेंसिंग करने के लिए ये चीजें बनाई।
0: जी जी, जी जी जी जी। तो यही अब जैसे इस समय अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की,
1: तो डॉक्टर साहब यहाँ रुकेंगे
0: जी,
1: क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है, इसका भी अपना एक अलग ही मंजर होता है, मौसम सुहावना होता है,
0: जी जी जी,
1: रिमझिम जो है सबको अच्छी लगती है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आपने कहा कि वर्षा में वात प्रकोप होता है,
0: जी
1: है ना, यानी संचय हो जाता है बात का,
0: संचय की अगली अवस्था है प्रकोप,
1: प्रकोप हो जाती है, संचय के बाद प्रकोप की अवस्था में आ जाती है
0: उसके।
1: तो वर्षा ऋतु में हमें किस तरह से ऋतुचर्या निभानी है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपकी पसंद का एक गाना प्ले करें।
0: अब जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और आपने मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं अपनी पसंद का गाना सुनूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई बम बम भोले, अपने भोलेनाथ जी का
1: जी,
0: कोई
1: जी,
0: अगर गीत हो।
1: शिव जी का महीना है
0: और शिव तो आदि और अनंत हैं,
1: जी जी,
0: है ना, सृष्टि का आदि हैं, तो उनसे अगर कुछ आप सुना दें तो
1: जरूर जरूर प्ले करते हैं ये रचना।

0: प्रोग्राम संजीवनी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीदेव फोंदनी, आयुर्वेदाचार्य। ये आज हमें ऋतुचर्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आप जानकारी दे रहे हैं। तो अब हम अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं।
1: जी सर।
0: और बात रुकी थी वर्षा ऋतु में, जो आजकल चल रही है उसमें वात प्रकोप जो है वो बढ़ता है। ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए,
1: जी
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए, सुबह से लेके शाम तक।
1: अब वर्षा ऋतु से जो है विसर्ग काल शुरू हो गया, दक्षिणायन शुरू हो गया। अब सूर्य का बल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, तो जो सौम्यता है वो हमारे चारों तरफ आने शुरू होती है।
0: अच्छा, सौम्यता,
1: सौम्यता बढ़ती है और चंद्र का बल बढ़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो अब वर्षा ऋतु में जल जो है, जो पानी बरस रहा है, वो जगह जगह एकत्रित हो जाता है,
0: बहुतायत में
1: वो जगह जगह एकत्रित हो जाता है। तो वर्षा ऋतु का काल जो है अग्निमांद्य का काल कहा जाता है। इस समय आपकी जो अग्नि है वो मंद होती है,
0: यानी जठराग्नि।
1: जठराग्नि जो आप, जिसको डाइजेस्टिव हम फंक्शंस भी कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य है आहार को पचाना,
0: डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा।
1: जी। तो क्योंकि अब अग्नि का बल कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि पिछला जो सीजन था वो ग्रीष्म ऋतु थी, वह शरीर के लिए बहुत कठिन समय था। सूर्य का बल बहुत तीक्ष्ण था उस समय जो है, और आपके शरीर के वात और पित्त जो है उस समय बहुत ज़्यादा दुष्ट होने के उनके अवसर बन जाते हैं।
0: जी।
1: और वो एक ऐसा समय होता है जब आपका शरीर का बल बहुत क्षीण हो जाता है।
0: जी।
1: अब आप उस तरफ जा रहे हैं जब अब सूर्य का बल कम हो रहा है और चंद्र का बल बढ़ रहा है, लेकिन अब आप क्या लेके आए अपने साथ, एक क्षीण बल लेके आए हैं।
0: बल है तो है लेकिन क्षीण है,
1: क्षीण बल लेके आए ग्रीष्म ऋतु से। तो अब आप जब उससे वर्षा ऋतु में आए तो इस समय आपका अग्नि बल कम है, अग्नि मंद है। तो हमें क्या करना है, वात के प्रकोप का है। अब वात का गुण क्या है, वात रूक्ष है, शीतल है। तो हमने ऐसे में किस प्रकार का आहार विहार करना है जो रूक्ष नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे में हमारा आहार होना चाहिए स्निग्ध, आहार होना चाहिए स्निग्ध, लेकिन वो गुरु नहीं होना चाहिए।
0: जी,
1: आप समझिए,
0: इसे थोड़ा सा और आसान
1: मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब हम लेते हैं घृत का उदाहरण लेते हैं,
0: घी की बात कर रहे हैं।
1: जी, देसी घी की बात कर रहे हैं। अब घी में हमारे यहाँ भैंस का और गाय का दो घी होते हैं। जो भैंस का घी होता है वो कफकर होता है, गुरु होता।
0: अच्छा।
1: है हैवी टू डाइजेस्ट होता है।
0: ओके,
1: है ना। और जो गाय का घी होता है वो वात पित्त का शमन करता है,
0: हल्का होता है,
1: लघु होता है। तो इस ऋतु में आपने घृत का सेवन करना है, परंतु गौ घृत का सेवन करना है,
0: देसी गाय का
1: ही
0: शुद्ध भारतीय।
1: जी बिल्कुल जी। अगर गाय घृत की जब भी बात होती है तो वो देसी गाय ही सही अभिप्रेत है उसका। तो उसका सेवन करना है। क्यों? क्योंकि वो लघु है और स्निग्ध भी है। तो जो वात प्रकोपित है उस प्रकोपित वात का शमन करेगी।
0: जी।
1: तो हमने आहार कैसा लेना है,
0: आजा मैं आ गई हूँ।
1: जी बिल्कुल। तो हमने आहार लेना है स्निग्ध युक्त लेना है, लेकिन गुरु नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो घी का जो मैंने एग्जांपल दिया उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए।
0: हमें घी लेना है लेकिन गाय का लेना है, देसी भारतीय शुद्ध नस्ल की जो गाय है
1: जी
0: उसका घी लेना हमने यहाँ इस काल में। हमें भैंस का घी नहीं खाना है।
1: बिल्कुल। और अगर दूध का भी सेवन, दूध भी सेवन करना है, वह भी गाय का ही दूध का सेवन करना है, क्योंकि वो लघु है।
0: अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब आपको रोकता हूँ क्योंकि कई बातें करते करते याद आती।
1: जी
0: ये बताइए कि वर्षा काल में दूध पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, क्या दही का सेवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
1: बहुत ही उचित प्रश्न है। और दही के बारे में इतने मिथ हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ हैं।
0: और एक बात और कह दूँ आपको
1: जी।
0: हमने ये भी सुना है अपने बड़ों से कि सावन का महीना आ गया है, इस महीने में अब दही का सेवन नहीं करना है। तो मुझे ये बताइए, क्या वर्षा ऋतु से दही का सेवन वर्षा ऋतु में हो सकता है और सावन में नहीं?
1: देखो, दही के जो गुण हैं, अब सावन आ ही गया,
0: क्योंकि वर्षा के भी अलग अलग रूप है ना।
1: जी,
0: सावन भी है, भादो भी है।
1: जी तो वर्षा ऋतु ही चल रही है, और जो दही का गुण है, दही उष्ण वीर्य है।
0: जी,
1: तो इसका अर्थ यह है कि ये जो वर्षा ऋतु है ये शीत वीर्य है, तो इसमें आप उसका पालन सेवन कर सकते हैं।
0: दही का सेवन वर्षा ऋतु में हो सकता है,
1: कर सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित।

0: होनी चाहिए।
1: एक कटोरी काफी
0: है, एक कटोरी काफी है। अगेन जैसे मैंने पिछली बार भी जब आपके साथ बैठा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि मात्रा का जो आकलन है वो व्यक्ति के अग्नि के अनुसार होता है। चाहे सभी के साथ वर्षा ऋतु में एक ही जैसा जरूर है, लेकिन फिर भी सबका अग्नि बल अलग अलग,
1: वो अलग बात। आपने एक सामान्य बात,
0: लेकिन एक सामान्य बात यह है कि आप दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में होना चाहिए और रात्रि में नहीं करना
1: जी,
0: क्योंकि दही गुरु है, उष्ण भी है अवश्य है,
1: पचाने लेकिन में मुश्किल हो जाए।
0: हाँ, इसलिए उसका अति मात्रा में सेवन नहीं करना,
1: नहीं
0: है।
1: करना। और दूध के बारे में,
0: और दूध के विषय में यह है कि दूध का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन ठंडा दूध नहीं पीना है आपने, दूध गर्म ही पीजिए।
1: हाँ,
0: और उसमें अगर आप सौंठ, इस तरह की चीजें, हल्दी, ये चीजें अगर आप डाल देती हैं, काली मिर्च, तो इससे उसका क्या है, वो दूध जो है सुपाच्य हो जाता है, आसानी से पच जाता है,
1: गुणों से युक्त हो जाता है,
0: गुणों से युक्त हो जाता है। और जल के बारे में भी यही है, जल के बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं कि जल कैसे, तो जल भी कोष्ण होना चाहिए, ठंडे जल का पान नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्नि मंद है,
1: जी,
0: है ना। तो इसलिए जल में भी अगर आप आजकल एल्कलाइन वाटर का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलो वो एक अलग चीज़ है, वो कमर्शियल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। बट अगर आप पानी में जैसे कुछ भी काली मिर्च डाल दें या एक आध लौंग डाल दें या कुछ इस तरह की चीज़ें करके आप उसको हल्का उबाल दें, फिर ठंडा करके फिर उसको पी जाएं।
1: तो एक बात और बताइए, पानी से बात एक और याद आ गई, आजकल लोग अपने ऑफिस में या कहीं बाहर पब्लिक प्लेसेस में अपना पानी लेकर जाते हैं, तो उस पानी में एक टुकड़ा खीरे का होता है, एक नींबू का होता है, कुछ पत्ते धनिए के, कुछ पालक के, कुछ जितना भी कुछ डाला जा सकता है।
0: जी जी,
1: उनसे पूछो कि ये क्या है, कि ये पानी है, ये गुणों की खान बन गया है, तो
0: जी
1: क्या
0: जी।
1: इस तरह से पानी पीना उचित है या ठीक है, या
0: मैं इसको एक
1: संक्षिप्त में अगर बताएं,
0: मैं इसको एक हद तक एक सही डायरेक्शन में जाने वाली बात कहता हूं, हालांकि पूरी तरह से वो कमर्शलाइज है, क्योंकि जिन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं सरलता से, हम उन चीज़ों को एकोमोडेट कर लेते हैं, वो थोड़ा उनको आसान लगता है और फैशनेबल लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, तो उसको ले जाने में और वैसा यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं है हमें, को
1: मतलब कोई उसमें बुराई नहीं है,
0: कोई बुराई नहीं है,
1: मैं राधा कोई ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना बात नहीं बनती, कोई ऐसी बात नहीं।
0: हाँ, जनरली एक एल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, जिससे कि जो पानी का पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाता है, और वो कहते हैं कि वो एल्कलाइन पीएच होने के कारण शरीर में जनरली खासतौर पर कैंसर है या कई तरह की बीमारियाँ जो एसिडिक पीएच के कारण, एक फेवरेबल एटमोसफियर मिलता है उन बीमारियों को पनपने का, तो इसलिए वो एल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट।
1: इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि कहाँ से कहाँ शुरू हुए, कहाँ तक पहुँच गए, अब मैं आपको फिर वापस लेकर आता हूँ।
0: जी जी,
1: आप बात कर रहे थे घी के बारे में, घी आपने उसके बारे में बहुत विस्तार से समझा दिया, और मुझे लगता है कि श्रोताओं को अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि घी का उपयोग वर्षा ऋतु में कैसे होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि वर्षा ऋतु में हमारा आहार कैसा होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक।
0: हाँ, मैं आपको बस वही थोड़ा सा ब्रीफ में यही बताना चाहता हूँ कि एक तो हमें ये पता लग गया कि हमारी अग्नि का जो बल है वो कम है और हमें उसके अनुसार ही भोजन करना है। तो जैसे अब हमने क्या कैसा भोजन करना है, अब ये सावन का महीना है, लोग अक्सर उपवास भी करते हैं, और उपवास की कल्पना आप देखिए
1: बड़ा पवित्र महीना माना जाता है,
0: हमारे यहाँ पवित्र महीना माना जाता है। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से जब बात करता हूँ ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हमारे यहाँ सेलिब्रेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि सेलिब्रेशन के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ना। सावन के महीने में उपवास की परंपरा ही इसलिए है क्योंकि उपवास का अर्थ है लंघन, यानी आपने लघु आहार का सेवन करना क्योंकि आपके अग्नि कम है, तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस समय जो है आपको लंघन के लिए उपवास का एक प्रोविजन दे दिया और उसको आपकी आस्था के साथ जोड़ दिया।
1: तो पूरे एक महीने का सावन होता है, इस पूरे महीने में उपवास कितने दिन का होना चाहिए?
0: उपवास से अर्थ भोजन का त्याग करना नहीं है, आयुर्वेद में जो उपवास जिसको लंघन कहा गया है उसमें ये कहा गया कि अपने लघु भोजन का सेवन करना है। मैं अगर आपको कहूँ कि इस समय जो है आपने मूंग की दाल है, ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि लघु है, सुपाच्य है,
1: मूंग साबुत,
0: मूंग चाहे आप मूंग साबुत ले लें चाहे धुली भी हो, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो एक मिथ है, जो एक परंपरा चली आ रही है, साबुदाने की खिचड़ी, साबुदाना गुरु होता है इस सीजन में, आपके लिए आपके अग्नि बल कम है इसलिए साबुदाना
1: ज्यादा भारी हो सकता है,
0: पचाना कठिन है, तो उस आयुर्वेद की दृष्टि से उचित नहीं मानता। जो लोग खा रहे हैं
1: पच रहा है तो अलग
0: विषय है, अदरवाइज फिर भी ये है कि वो एडवाइजेबल नहीं है, सामान्य दृष्टि से नहीं है, इस सीजन में नहीं।
1: और ऐसी बात नहीं कि इसके बिना बात नहीं बन सकती,
0: इसके बिना बात हाँ बिल्कुल,
1: इतना कुछ है हमारे पास,
0: आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे गेहूं है, गेहूं के बारे में भी बहुत सारे मिथ हैं, मैंने पिछली बार भी कहे थे कि गेहूं को जनरली लोग कहते हैं ये बाहर से आया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में स्पष्ट रूप से जब वर्णन किया है आहार द्रव्यों का, तो उसमें गेहूं का गोधूम करके वर्णन किया है।
1: अच्छा,
0: और बहुत अच्छा है बिल्कुल।
1: क्या नाम दिया उसमें?
0: गोधूम,
1: गोधूम,
0: गोधूम कहा है उसको।
1: अच्छा, गेहूं का नाम गोधूम,
0: गोधूम है। तो
1: बाकी उसने धूम मचाई हुई।
0: हाँ बिल्कुल, गेहूं का सेवन इस ऋतु में अच्छा है। क्यों
1: अच्छा?
0: अच्छा है क्योंकि जो

0: गेहूं है वो मधुर है, बल्यकर है ना, और स्निग्ध है, इसलिए गेहूं का सेवन करना चाहिए। इस सीजन में मिलेट्स का सेवन कम करें,
1: मिलेट्स का सेवन
0: मिलेट्स का
1: कम
0: सेवन
1: करें।
0: कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिलेट्स रूक्ष होते हैं और वो वात का प्रकोप आगे और कर सकते हैं। अभी आप 2 महीने बाद मिलेट्स का सेवन आराम से कर सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन कम से कम 2 महीने तक मिलेट्स का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करें। गेहूं का सेवन आप करें क्योंकि वो मधुर रसात्मक होता है, वृष्य होता है, बल्य होता है और स्निग्ध होता है। अगर आपकी भूख 3 रोटी की है तो 2 रोटी पर रुक जाइए।
1: थोड़ा पानी के लिए, थोड़ा हवा के लिए।
0: हाँ, और पानी का जब भी आप भोजन के साथ करते हैं तो भोजन के साथ ही पानी का सेवन करना है, भोजन के अंत में
1: बाद
0: पानी का
1: में।
0: सेवन नहीं
1: अच्छा
0: करना है।
1: अच्छा बाद में कब पीना है? 1 घंटे के बाद?
0: लेकिन 1 से 1.5 घंटे के पश्चात, तो फिर उसके बाद आप जो है जल का सेवन कर सकते हैं।
1: एक मुझे बताइए कि वर्षा ऋतु में ऋतुचर्या है,
0: जी
1: उसमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा गया है, किस तरह से उसका ख्याल रखना है?
0: बहुत
1: शारीरिक तौर से तो आपने बता दिया, मानसिक स्वास्थ्य भी कभी कभी परेशान करता है,
0: जी
1: उसकी वजह क्या होती है और उसको किस तरह से हमें सम में रखना है?
0: जी बहुत ही आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो मैं पिछले मेरा लगभग 20 साल का अनुभव है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का, और कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में लोगों के मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, और इसका कारण क्या है? जो
1: हाँ,
0: वर्षा ऋतु होती है, जो भी एक्सट्रीम वेदर होते हैं, वर्षा ऋतु है, एक्सट्रीम समर है,
1: झमाझम बारिश,
0: जी बहुत बारिश वाला मौसम है,
1: आर्द्रता,
0: बहुत गर्मी वाला मौसम और
1: हाँ
0: बहुत ठंड वाला भी
1: हाँ
0: मौसम,
1: जी हाँ जी
0: ये 3 मौसम में अक्सर क्या हो जाता है कि आपकी सामाजिकता नष्ट हो जाती है, सीमित हो जाती है। मतलब आपका सोशल बिहेवियर ही नहीं होता, आपकी मेंटल जो एक कैपेबिलिटी होता है वो उस पर भी एक एक तरह का आवरण करता है, तो हम कहीं ना कहीं एक सफोकेटेड फील करते हैं। तो इसलिए वर्षा ऋतु है, या बिल्कुल जो एक्सट्रीम चिल्ड आप ये कह रहे हैं, आप शिशिर का वो ऋतु का आप समझ लीजिए, तो उसमें लोग अक्सर डिप्रेस होते हैं और लो होते हैं मूड में, मानसिक
1: हाँ,
0: अवस्था में थोड़ा
1: डिप्रेसिंग मूड सा हो
0: जी
1: जाता
0: अवसाद
1: है।
0: होता है, और
1: जी
0: ये स्वाभाविक होता है, ये ऋतु के कारण है, और ये
1: अच्छा,
0: हमें
1: इसमें घबराने की बात नहीं
0: इसमें
1: है?
0: घबराने की
1: हाँ
0: बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमारे आचार्यों ने और हमारे शास्त्रों में ही उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए कि आप एक तो भोजन सात्विक लें, सात्विक अर्थात जो सरलता से पच जाए,
1: हल्का,
0: हल्का,
1: सुपाच्य
0: हाँ, क्योंकि
1: और
0: आप
1: लघु।
0: आपके शरीर को
1: हाँ
0: संघर्ष नहीं करना उसे बचाने
1: जी
0: के लिए, है ना, क्योंकि अगर शरीर पर कठिनाई में फंसता है तो मन को भी दुखी करता है।
1: हाँ
0: तो ऐसे मौसम में जब आप सामाजिक रूप से बहुत सीमित हो जाएं, व्यवहारिक रूप से कम हो जाएं आप, और मानसिक रूप से आप फील करें कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और ट्राई टू इनोवेट मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस, योगा और ध्यान ये अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, और कम से कम प्रयत्न करना चाहिए वो चीज़ें जो आपके लिए ट्रिगर्स होती हैं,
1: जी
0: खास तौर पे जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनसे, जो वात प्रकृति वाले लोग हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा ये प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि ये सीज़न उनके लिए बहुत कठिन होते हैं।
1: और सावन का महीना तो वैसे भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है,
0: जी यही
1: यही
0: कारण
1: वजह
0: है कि
1: होगी।
0: अध्यात्म
1: हाँ
0: को इस समय इसलिए लाया गया क्योंकि लोग लो फील करते थे।
1: हाँ तब तब जब पुराने दौर की आप बात कर रहे हैं, तब चलना फिरना जो सीमित हो जाता होगा,
0: बहुत सीमित
1: अब
0: हो
1: एक
0: जाता
1: जगह पर
0: था
1: बैठे हैं तो क्या करना है,
0: जी, तो
1: तो
0: वो
1: अध्यात्म से के साथ जुड़ जाएं।
0: तो मानसिक अवसाद से दूर जाने के लिए यही था उन्होंने कि अध्यात्म का अर्थ है कि आप प्रकृति के समीप चले जाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रोताओं, आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ रहे डॉक्टर श्रीदेव फोंदनी, आयुर्वेदाचार्य। आज इन्होंने ऋतुचर्या के बारे में बताया, खास तौर से वर्षा ऋतु में हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रा स्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
4: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
1: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

अनु मलिक की संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: कुछ होता है,
1: कुछ कुछ होता है।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय
5: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम, बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोंसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, आवाज रूना की, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने। Just

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी अपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।

केंद्रीय एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहता है 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करते हैं 2:15 पर, 5:00, 6:00, 8:45 पर समाचार संध्या और 11:00। स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे लम्हे 5:20 पर और 5:30 उमंग। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए हम पेश करेंगे 6:30 पर। 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

और अब जानकारी उन कार्यक्रमों की जो विविध भारती मुंबई से रिले किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे प्रोग्राम त्रिवेणी, 2:30 बजे सदाबहार नगमे, 3 बजे प्रोग्राम सखी सहेली। टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे आज के मेहमान प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से। इस बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने सुनवाए जाते हैं। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में एक झलकी आप सुनेंगे चुपके चुपके। अभिनेत्री काजोल पर केंद्रित है आज के फनकार प्रोग्राम। रात 9:30 बजे

रात 10 बजे प्रोग्राम छाया गीत। आठ बजकर 15 मिनट पर प्रोग्राम चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए

0: 8:15 पर रात आप सुनेंगे स्पॉन्सर प्रोग्राम फार्म टू सिटी और इसके बाद प्रोग्राम चित्रलोक। ये थी जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की, कुछ हमारे यहाँ से जो आपके लिए पेश किए जाएंगे, कुछ विविध भारती मुंबई से जो रिले किए जाएंगे। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार,

0: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव ना करते हुए उसे 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। गवर्नर ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहल के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्य में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने के लिए और संगठित अपराधियों, फरार बदमाशों एवं आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, स्नैचिंग, अपहरण, अवैध हथियारों सहित गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें कानून के दायरे में लाना तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रदेश में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पुलिस की विभिन्न इकाइयों द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए 1 अगस्त से 3 अगस्त तक मात्र 3 दिनों में 903 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 139 आरोपी इन गंभीर मामलों में सीधे गिरफ्तार किए गए, जबकि 767 अन्य मामलों में गिरफ्तार अपराधी भी इस अभियान के दौरान पकड़े गए। पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री अजय सिंगल ने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत प्रदेश भर में ऑपरेशन ट्रैक डाउन विशेष अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना तथा आमजन को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, स्नैचिंग और अवैध हथियारों जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला जिले के गांव शाहपुर में अत्याधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग और मैसर्ज अशोक लेलैंड के बीच समझौता किया गया। श्री विज ने बताया कि यह संस्थान लगभग 13 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसे हरियाणा सरकार और अशोक लेलैंड लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। यह संस्थान भारी मोटर वाहन तथा हल्के मोटर वाहन चालकों को वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गैस कटर से एटीएम मशीनें काटकर लाखों रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बड़ी वारदातों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव ने बताया कि पहली वारदात 3-4 जुलाई की रात को भोपानी क्षेत्र में हुई, जहां हिटाची मनी स्पॉट एटीएम को काटकर 6,53,000 रुपये की चोरी के लिए लिए गए थे। उन्होंने बताया
1: जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी है जिसका नाम थुकुम है और वो अटाली गांव का रहने वाला है। ये आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और इसी ने जो अन्य आरोपी है उन्हें इस एटीएम काटने की जो वारदात के बारे में गाइड भी किया था, उन्हें टीच भी किया था तथा मोटिवेट भी इसी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद एक अन्य आरोपी है विकास, जो इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी था राजू नाम का, जो अभी बिहार जेल के अंदर बंद है, वो भी इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के अवसर पर फरीदाबाद ओमनी रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:15:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए मिलकर आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का।

अभी आपने किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये गीत सुना, देश प्रेमी फिल्म से। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, बरसात का मौसम बहार तो लाता ही है, पर साथ ही बढ़ा देता है पेट की बीमारियों का खतरा भी। ऐसे में क्या खाएं, क्या नहीं, कैसे रखें अपने पाचन तंत्र का खास ध्यान, जानिए इन सभी सवालों का जवाब इस बार प्रोग्राम FM लाइफलाइन में। आज बाद दोपहर 3:30 पर हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर विशाल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

अभी आपने गुलजार का लिखा हुआ ये गाना सुना, ए आर रहमान के संगीत में सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में। ये फिल्म थी दिल से।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और आखिर में फिल्म संगीत के ये गाना है श्रीनिवास और स्वर्णलता की आवाजों में। ये फिल्म है दिल ही दिल में।

0: दिल ही दिल में इस फिल्म से श्रीनिवास और स्वर्णलता की आवाजों में ये गीत सुना। गीत को लिखा था महबूब ने, संगीत था A.R. रहमान का और यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
3: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
2: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
3: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
2: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
3: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
2: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
4: वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का, या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। ये आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना। BD मिश्रा का लिखा गीत है और SN त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है ये गीत।

लगता है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान की भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है। बहुत

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे कितान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहां देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी, तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर की इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

0: उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले सुमधुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरिस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई कि आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है। बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना, सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना, अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, हाँ हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और

और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पति देव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कट्टी हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपकी चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई? हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है? कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी श्रोता लिखती है कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़कियों पर आती ठंडी हवा की लपटे। अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है, बारिश में बस कुल्हड़ वाली सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाय रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुँच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं का चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे

खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार

स्थाई नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

कहा दैया ताय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चरैया जगे मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांश

0: वैली शेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही

0: ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन

0: AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडीचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के 7 अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया साथ है आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली, गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, आज ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हजरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

दोस्तों, बरसात का मौसम बहार तो लाता ही है, पर साथ ही बढ़ा देता है पेट की बीमारियों का खतरा भी। ऐसे में क्या खाएं, क्या नहीं, कैसे रखें अपने पाचन तंत्र का खास ध्यान, जानिए इन सभी सवालों का जवाब इस बार प्रोग्राम FM लाइफलाइन में। आज बाद दोपहर 3:30 पर हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर विशाल, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप बार बार कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही है
1: ना, अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है, तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे। उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है, हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
2: किन बातों की? साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया, क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर
2: इस विषय पर भी
1: तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
2: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है, बहुत विराट है
2: जी,
1: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक

0: ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र
1: पति
0: पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये
1: हमें ये
0: साड़ी दी
1: साड़ी
0: थी।
1: दी थी, तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं, पर
0: और
1: अगर
0: ये जो मौसम है ना,
1: हम
0: बारिश का मौसम, इसमें
1: हाँ
0: जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है। और
1: हाँ
0: चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो
1: यानी वो
0: जाती है।
1: खाने का जायका बढ़ा देती है।
0: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते
1: सुनते
0: हैं ये
1: हैं
0: गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्वभर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित

0: की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
1: बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
0: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
1: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों की डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
0: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
1: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
0: जी। और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता महेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियाँ जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
1: माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
0: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
1: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, और भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं
1: है?
0: तो झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं हो सकता।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी आवाज में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े।
1: ये नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। और भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर गए होंगे ना
0: कि पत्नी से डांट खानी पड़ेगी,
1: क्यों ना आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात।
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दिया कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही तो सामान्य सी बात है।
0: हाँ, लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी, कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाह

0: चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है,
1: बिल्कुल
0: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए तो अलग होना बेहतर होता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा, उसे तो दोनों चाहिए ना। उसे माता पिता का घर भी
0: का
1: चाहिए, प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।

0: ਜੁਬੀਨ ਨੌਟਿਆਲ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल शासन, कौशल विकास और डाटा आधारित प्रशासन पर चर्चा की। लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित किया, जिससे बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े 2 विनियमों में संशोधन किया। अनुबंधित मान से 10% तक अधिक बिजली उपयोग करने पर सरचार्ज नहीं लगेगा। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हरियाणा में सीवर कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल शासन, कौशल विकास और डेटा आधारित प्रशासन पर चर्चा की। बैठक के दौरान विश्व बैंक के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 19 से 22 अक्टूबर तक कोरिया में आयोजित होने वाले कोरिया डिजिटल समिट में विश्व बैंक द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से विकसित AI सैंडबॉक्स को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक से हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं विकास परियोजना को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि इसके तहत प्रस्तावित AI गुरुकुल युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करेगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लिए समर्पित AI मॉडल तैयार करने का सुझाव भी रखा। उन्होंने कहा कि ये मॉडल राज्य के कानूनों, नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं को समझते हुए अधिकारियों को त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा और नागरिकों को अधिक तेज, सरल एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक से प्रदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एयर क्वालिटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने में सहयोग का अनुरोध भी किया। उन्होंने विश्व बैंक से विभिन्न सरकारी विभागों की चुनौतियों का अध्ययन कर उनके सरल, व्यावहारिक और किफायती तकनीकी समाधान विकसित करने में भी सहयोग मांगा। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों को कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों 7 अगस्त को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जिसमें खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रात्रि भोज पर खिलाड़ियों के साथ

0: खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण को लेकर चर्चा भी करेंगे।
1: बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है। 7 तारीख को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रैंड अभिवादन उनका रखा है और उनको उनकी प्रोत्साहन राशि हो या नौकरी की व्यवस्था या हरियाणा के खिलाड़ियों को आगे कैसे ले जा सकते उन पर रात्रि भोज में चर्चा करेंगे।
0: श्री गौतम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 1,50,00,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 75,00,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 50,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को प्रोत्साहन स्वरूप 7,50,000 रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विनियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अनुबंधित मांग से 10% तक अधिक बिजली उपयोग करने पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, जबकि पहले स्वीकृत लोड से 5% से अधिक मांग होने पर भी बिजली शुल्क पर 25% सरचार्ज लगाया जा रहा था। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह संशोधन विधेयक विशेष रूप से उन औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी साबित होगा जिनके यहाँ मौसमी उत्पादन संबंधी अथवा अन्य अस्थायी कारणों से बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार यदि मांग 110 से 115% के बीच रहती है तो कुल बिजली शुल्क पर 20% सरचार्ज लगेगा, जबकि 115% से अधिक मांग होने पर पहले की तरह 25% सरचार्ज लागू रहेगा। संशोधित नियमों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बिना वोल्टेज स्तर बदले अपना लोड कम कराता है तो उसे केवल निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20,000 होगी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पास कर दिया था। इस विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। इस साल मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हरियाणा में सीवर कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। समिति में मुख्यालय के मुख्य अभियंता, संबंधित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सर्किल के अधीक्षण अभियंता तथा संबंधित मंडल के कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि समिति अपने अपने आवंटित क्षेत्रों का समय समय पर दौरा करेगी और मौके पर जाकर सीवर कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा मानकों, सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करेगी ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की कमी सामने आती है तो उसे तत्काल दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्री गंगवा ने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रदेशव्यापी कलश यात्रा का आज पानीपत में स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्वागत द्वार बनाकर जगह जगह पुष्प वर्षा, आरती और जय घोष के साथ कलश यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में भजन कीर्तन और गुरु रविदास के संदेशों का प्रचार किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य गुरु रविदास महाराज के समानता, भाईचारे, सामाजिक समरसता और मानव सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से कलश गांव-गांव भेजे जाएंगे ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए लिंक अधिकारी नामित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पद के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव को तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के OSD को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया गया।

है। इसी प्रकार हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को लिंक अधिकारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के OSD को लिंक अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व अपने लिंक अधिकारी को इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल शासन, कौशल विकास और डाटा आधारित प्रशासन पर चर्चा की। लोकसभा ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पारित किया, जिससे बैंकों की रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोतियों, जयमाला प्रोग्राम लिए बस थोड़ा जो इंतजार करो। ये प्रोग्राम असि विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में। अनुराधा उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की।

0: केसरी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा, आरको का संगीत। लीजिए अब सुनते हैं भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: भारतीय सेना गीत अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाय हाय, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में ज्वेल थीफ इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज़।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला और वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।
4: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है, वेव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वेव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

सत्य पे सत्ता ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आरडी बर्मन, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत आराधना फिल्म से अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन की तर्ज।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त।

0: चुपके चुपके, लेखक हैं आर के शर्मा।
1: माँ, मैं बिना लड़की देखे शादी नहीं करूंगा, बस।
2: तो मैंने तो हाँ कर दी है, और लड़की की माँ ने मुझसे पूछा कि क्या लड़का लड़की को नहीं देखेगा, तो मैंने कह दिया कि वो तो बहुत सीधा है।
1: माँ, पर ये मेरी जिंदगी का सवाल है।
2: तो क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं?
1: ये विश्वास की बात नहीं है माँ।
2: मैं तुझे बता देती हूँ कि लड़की एक ऊंचे खानदान की है, उसके पिता बहुत बड़े व्यापारी हैं,
1: और उसके मामा के पास दो बंगले हैं, उसका भाई इंग्लैंड के लिए बिस्तर बांधे बैठा है, उसके मौसा की लॉटरी निकली है, उसके चाचा का अपना फार्म हाउस है। माँ, मेरी शादी लड़की के मामा, मौसा, चाचा या भाई से तो नहीं हो रही ना?
2: देख, तू बहुत जबान चलाने लगा है।
1: पर
2: मैं,
3: माँ मैं आ गई।
2: आज तू जल्दी आ गई बेटे,
3: आज तो पीरियड खाली थे। भैया तुम्हें क्या हो गया है? बासी टमाटर की तरह माथे पर ये बल कैसे पड़े हैं?
1: कमो,
2: बिना देखे शादी नहीं करेगा।
3: मैं बताऊँ माँ, भैया को भाभी का फोटो मंगवा दो, पहले फोटो देखेंगे फिर उसके सपने देखेंगे।
1: कमो, तू जा अपना काम कर।
3: मैं तो आपके काम की बात कर रही थी।
1: तू चुप नहीं रह सकती?
3: रह तो सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मामला कुछ इतना संगीन है कि न चुप रहते बनता है और न कुछ कहते। मैं तो सोच रही हूँ, चुप रहूं तो कैसे रहूं, और कहूं तो क्या कहूं।
1: बस मैंने कह दिया ना, मैं बिना लड़की देखे शादी नहीं करूंगा, और लड़की पसंद ना आई तो मना भी कर दूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ।
3: माँ, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, भैया कहता तो ठीक ही है, आजकल तो लड़कियां बिना देखे परखे शादी ही नहीं करती। ते भैया तो
2: मैं लड़की वालों से हाँ कर चुकी हूँ, अगर लड़की देखकर इसने मना कर दिया तो जानती है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी मैं।
4: अरे अरे अरे अरे अरे, ये क्या कह रही हो जीजी, क्या हो गया?
3: नमस्ते मासी।
4: नमस्ते।
2: तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं उसके रिश्ते की बात कर दी है।
3: हाँ।
2: और अब वो कहता है कि बिना लड़की देखे मैं ब्याह ही नहीं करूंगा।
3: मौसी, इसमें हर्ज भी क्या है?
4: बस इतनी सी बात है? अजी, तुम तो लड़के वाले हो, तुम क्यों डरो, सब ठोक कर रिश्ता करो। जी जी हाँ,
3: अभी को देखने का मेरा मन भी बहुत करता है।
4: ए? तो चल ना, तुझे दिखा लाऊं।
2: वो कैसे?
4: अरे मैं कम्मू को साथ लिए जाती हूँ।
3: हाँ माँ, सचमुच बड़ा मजा आएगा। शाम को भैया आएंगे तो मैं कहूंगी कि मैं भाभी देख आई।
4: क्या?
2: पर पहले उन्हें बताना तो होगा ना।
4: अरे तुम इसे मेरे साथ भेज दो ना जीजी।
3: हाँ, हाँ।
4: मैं इसे लड़की भी दिखा दूंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा।
2: कैसे जमना?
4: जी जी, ये तो मुझ पे छोड़ दो।
3: तो चलो मासी।
2: नहीं जमना, मुझे तो डर लगता है, और अगर उन लोगों को पता लग गया तो।
4: ओफ, मुझ पर विश्वास करो ना, हम किसी बहाने उनके यहाँ चले जाएंगे।
3: हाँ।
4: और चुपके चुपके दिखाएंगे।
3: माँ हाँ कह दो ना।
4: अरे चल कमो, तैयार हो जा।
3: हाँ, हाँ।
4: अरे तुम फिकर ना करो जीजी, सब काम चुपके चुपके होगा।
2: चुपके चुपके?
4: हाँ।
3: भैया।
5: हाँ?
3: मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लड़का लड़की को देखना चाहता है।
5: अरे सुना तो मैंने भी है, पर इसमें सोचने को क्या धरा है, एक बार नहीं हजार बार देख लें। हमारी रमा में क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, घर गृहस्थी का सारा काम जानती है।
3: वो तो ठीक है, लेकिन
5: अब लेकिन लेकिन छोड़ो, उसकी माँ बहुत सीधी है, लड़का भी शरीफ है,
3: फिर ऐसी क्यों बात करता है? लगता है लड़के को किसी ने बहका दिया है।
5: अच्छा है, उसका शक दूर हो जाएगा, फिर ये कोई अनुचित बात तो है नहीं, आजकल तो बिना देखे कोई रिश्ता तय नहीं करता।
3: थोड़ी देर को मान लो भैया कि लड़के ने इनकार कर दिया, फिर क्या होगा?
5: अरे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा या धरती फट जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ, क्या हमें रमा की पसंद का ख्याल नहीं करना चाहिए? रमा को भी पसंद करने का हक है।

0: मेरा ख्याल है कि दोनों को एक दूसरे को दिखा देना चाहिए, आपस में बातचीत करा देनी चाहिए।
1: तुम ठीक कहते हो, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे जीजा जी टूर से 15 दिन बाद ही लौटेंगे।
0: अरे अभी जाकर लड़के से बात करता हूँ, कल तो मुझे भी कानपुर जाना है, आज इन दोनों को मिला देते हैं।
1: अरे जैसा तुम ठीक समझो वैसे ही करो।
0: अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, अच्छा। तुम रमा को जरा तैयार कर देना, भगवान सब भला करेंगे।
2: मौसी मुझे तो डर लग रहा है।
3: ओफ, इतना डर लगता था तो आई ही क्यों?
2: हाँ अच्छा अच्छा, देखा जाएगा जो होगा। मौसी यही घर है ना, तुम क्या कहोगी?
3: अरे बिटिया तेरी मौसी ने बहुत दुनिया देखी है, तू चुपचाप चली जा बस।
2: मकान तो बड़ा अच्छा है।
3: अरे हाँ रे, देख तो मोहल्ले में सबसे बढ़िया मकान है।
2: ये क्या पता इनका अपना मकान है, किराए का भी तो हो सकता है।
3: हाँ, वो तो सकता है। देख तो
2: पढ़ तो क्या लिखा है? ओम निवास, ये तो इनका अपना मकान लगता है। इनका नाम भी तो ओम प्रकाश है। तो अब क्या दरवाजे की घंटी बजाओगी मौसी? मौसी मौसी, इस तरह खिड़की में से अंदर मत झांकू, कोई देख लेगा।
3: मैं देख रही थी कि कोई मर्द तो घर में नहीं है,
2: अगर कोई हुआ तो।
3: उफ, उफ, चुप रह तू, लगता है कोई नहीं है, चल तू घंटी बजा।
2: नहीं मौसी, तुम ही बजाओ।
3: उफ, उफ, क्या लड़की है।
2: ठीक है, मैं ही बजाती हूँ।
4: कौन है?
5: हम हैं बहन जी, दरवाजा खोलिए।
4: आइए।
5: हम संगीता जी के घर आई थी, पता चला वो पहाड़ पर गई हैं।
4: कौन संगीता?
5: अजी हमारे रिश्तेदार हैं, पास वाले मोहल्ले में रहती हैं। हम तो वापस जा रही थी पर इतनी कड़ी धूप, बस कुछ पूछो ही ना जी। इसे प्यास लगी थी तो हमने सोचा पानी ही पी ले, थोड़ा बहुत सुस्ता लेंगे तब चलेंगे।
4: आप अंदर आइए, आइए आइए बैठिए, मैं अभी पानी ला दूँ।
3: जी जी। अरे वो कम्मू, अमीर आदमी लगते हैं। ठीक ठीक सोफा सेट कितना बढ़िया है। हाँ। अरे पर्दे भी कीमती है। अरे देख बीच कितना बड़ा है।
5: हाँ।
3: अच्छी आशा भी लगती है, दहेज बहुत देंगे। अरे बिटिया गहने कपड़ों से तुम्हारा घर भर देंगे।
4: लीजिए।
3: कमो पहले तू पी बिटिया।
4: थैंक यू। ये लीजिए, आप भी लीजिए।
3: धन्यवाद बहन जी, पानी तो बहुत ठंडा है, मजा आ गया।
4: ये आपकी लड़की है?
3: जी है तो मेरी लड़की, पर शुरू से ही मुझे मौसी मौसी कहती है ना कम्मा।
4: कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
3: एमए कर चुकी है बहन जी, बीए में पढ़ रही है। हाँ।
4: क्या कहा? बीए कर चुकी हूँ, एमए की तैयारी कर रही हूँ।
3: अरे बहन जी सच पूछो तो मुझे आजकल की पढ़ाई का बिल्कुल पता नहीं लगता। अच्छा बहन जी एक बात बताइए, आपकी वो क्या करते हैं?
4: अपना ही बिजनेस है।
3: अच्छा।
4: कल ही बम्बई गए हैं, परमात्मा का शुक्र है, अच्छी दाल रोटी चल जाती है।
3: बहन जी ऐसी दाल रोटी तो भगवान सबको दे, आपके घर में किस चीज की कमी है भला? हाँ
4: मेरी भी एक लड़की है।
3: हाँ अच्छा कहाँ है, जरा बुलाइए तो।
4: वो अपनी सहेली के घर गई है, बस आती ही होगी।
3: अच्छा अच्छा, घर में और कोई नहीं है?
4: नौकर बाजार गया है, इस वक्त तो और कोई नहीं है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
6: कमला कमला कमला।
7: हाँ शांति।
6: वो स्पिरिट है, मुन्नू। हाँ। के चोट लग गई। हाँ। है।
7: अभी लाए, अभी लाए।
3: कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए जी।
6: कमला इधर आ।
7: हाँ क्या बात है? जानती है कल क्या हुआ? पिछली गली में दोपहर को दो औरतें आई, कहने लगी पानी पिला दो प्यास लगी है। बेचारी घर वाली रसोई में पानी लेने गई तो उन्होंने बाहर से रसोई की कुंडी लगा दी और सारे घर का सफाया कर दी। घर वाली का बच्चा सो रहा था, उन्होंने कहा चुपचाप रसोई में खड़ी रहे, अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं, बता। हाँ सुना तो मैंने भी था, उसने तो सारा घर लूट लिया।
3: आजकल जमाना बहुत खराब है कमला, किसी अनजान आदमी या औरत को इस तरह घर में आने नहीं देना चाहिए। तू इन लोगों को जानती है क्या?
7: नहीं तो?
3: तो फिर क्यों बिठा लिया?
7: कहती थी पानी पिला दो।
3: लो मुझे तो वही औरतें लगती हैं।
7: पता इनकी हिम्मत तो देखो, कल पिछली गली में आई और आज यहाँ आ गई। बिल्लू की माँ ने इन्हें कल देखा था, वो कह रही थी एक पतली दुबली लड़की थी और दूसरी जरा सी भारी,
8: कहीं मेरे साथ भी धोखा ना हो।
7: अरे मुझसे पूछ रही थी कि घर में और भी कोई है।
3: हो, ये तो वही है, हो ना हो ये कल वाली ही हो।
7: हे भगवान, हे भगवान,

0: मैं जरा इन्हें मजा चखाती हूँ।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: नमस्ते आंटी। अच्छा आप कहाँ रहती हैं?
2: जी सेक्टर नगर में।
1: ओ इधर किन से मिलने आई थी?
2: मैं वो सरोज से मिलने आई थी।
1: आप तो कह रही थी कि संगीता से मिलने आई
2: है। बहन जी बात तो एक ही है ना, उसका मायका का नाम संगीता ही था लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने उसका नाम सरोज रख दिया।
1: आप समझी। अच्छा अच्छा ये वही सरोज जो सड़क के पार वाले कोने में पीले मकान में रहती है। नंबर है 420।
2: हाँ जी जी वही वही।
1: और जिसके दो लड़की और एक लड़का है।
2: बहन जी बिल्कुल वही।
1: बताओ। आइए आपको अपना मकान मैं दिखा दूँ।
2: जी जी बहुत बढ़िया मकान।
1: आइए आइए आइए आइए। ये है बेडरूम।
2: अच्छा अरे कम्मो तुम भी अच्छी तरह देख ले।
1: सच सच बताइए आप लोग हैं कौन?
2: जी
1: कोने वाले पीले मकान में तो साधना रहती है
2: ना,
1: और उसके कोई औलाद नहीं है।
2: अजीब
1: आपको शर्म नहीं आती इस तरह से लोगों को लूटते हुए?
2: हाँ?
1: कल ही अपने इस मोहल्ले में आपने हाथ साफ किया और आज आप फिर से आ गई।
2: अजीब
1: कमला कमला इधर आ। कमला इन्हें इसी कमरे में जरा बंद कर दो। ये पकड़ इधर से।
3: मोतीलाल जी आपके घर में चोर है, जल्दी आ जाओ। मोतीलाल जी मोतीलाल जी अरे जल्दी आओ जल्दी आओ।
4: अरे ये छोर कैसा है भगवान खैर करे। अरे कमला कमला
1: आज हमने चोर पकड़े। चोर
4: चोर कैसे चोर?
5: और कल जो दो औरतें पिछली गली में आई थी वो आज हमारे घर में भी आ गई हैं।
4: अच्छा?
5: शांति ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है।
4: अच्छा
5: ये कौन?
4: ये मरीज आए हैं।
5: अरे हमारे होने वाले दामाद।
6: नमस्ते।
5: नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ आओ तुम दूसरे कमरे में बैठो बेटा।
6: जी बैठाओ। जी आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं भी इन देवियों के दर्शन कर लूं। इन देवियों के दर्शन तो मैंने आज तक नहीं किए। अरे मौसी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
5: हाय राम ये सब क्या हो गया?
1: नरेश तू यहाँ क्या कर रहा है?
4: देख
1: देख तेरी ससुराल में मेरी और तेरी बहन की क्या खातिर हुई है।
4: लेकिन मौसी
1: चुप। क्या मौसी मुझे लगा रखी है? हम तो तेरी होने वाली बहू देखने आए थे। चुपके चुपके तू जिद कर रहा था इसलिए। और

के चुपके। अभी आप ये झलकी सुन रहे थे। लेखक थे आर के शर्मा और निर्देशिका थी नीलम चोपड़ा।

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

0: किसान वीरो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना तहत योग किसान परिवारां नूं हर साल 6000 दी वित्तीय सहायता तीन बराबर किश्तां विच सीधी बैंक खाते विच भेजी जांदी है। जेकर तुसीं योग हो तां अपनी रजिस्ट्रेशन अते ईकेवाईसी समय सिर पूरी करो।
1: वधेरे जानकारी लई अपने नेड़ले कॉमन सर्विस सेंटर खेतीबाड़ी विभाग या ब्लॉक खेतीबाड़ी दफ्तर नाल संपर्क करो। पीएम किसान किसानां दा सम्मान खुशहाली वल इक मजबूत कदम।
0: जनहित विच जारी करता खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
2: जी दोस्तों, सानू पता चलिया कि असी उत्पाद जिहड़े ने किसान सीधे तौर दे उपर अपने ग्राहकां तक कुछ दी पहुंच बना के वेच सकदा है। डॉक्टर प्रवीण जी, तुहाडे कोलों जानना चाहांगे कि एग्रो बेस्ड प्रोसैसिंग यूनिट्स जिहड़े हुंदे ने उहनां दा किसानां दे लई की रोल हुंदा है?
3: जदों कोई भी किसान प्रोग्रेसिव किसान आपां बोलदे जिन्हां नूं, उहदे विच इक इच्छा जागी कि मैं हुण अपने निरोल प्रोडक्शन तों लैके

0: कभी सुखत हर हाल।
1: कदे बारिश कदे गड़ेमारी कदे सोका या तूफान कुदरती आफतां दा खतरा हर वेले रहिंदा है।
0: पर हुण चिंता नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाल अपनी फसल दा बीमा करवाओ अते कुदरती आफतां कारण हुए नुकसान तो वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करो।
1: फसलां दा बीमा, किसान दा भरोसा, सुरक्षित खेती, निश्चित भविष्य।
0: बीजो उम्मीद वड्डो विश्वास, फसल बीमा है तो हाडे नाल खास। सुरक्षित खेती, खुशहाल परिवार, यही ता है तरक्की दा आधार।
1: विधेरे जानकारी ले अपने नेड़ले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, खेतीबाड़ी विभाग या खेतीबाड़ी अधिकारी नाल संपर्क करो अते समय से अपनी फसल दा बीमा जरूर करवाओ।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनाओ, अपनी मेहनत नू सुरक्षित बनाओ।
1: जनहित विच जारी करता खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।
2: गल कर रहे थे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स की, जिस दे विच खाण योग ते ना खाण योग दो तरह के प्रोडक्ट्स होंदे ने। खाण योग की जेकर आप गल करते हैं तो उहदे विच किते ना किते ग्राहकां दे मन दे विच हुंदा है कि ये प्रोडक्ट मेरे वास्ते सेफ है या नहीं सेफ। सो उस वास्ते जानना चाहुंदे सी कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट वेचण लई किसी लाइसेंस की भी जरूरत हुंदी है।
3: हाँ जी, जे तां आपां फ्रैश चीज़ मिलनी, ताज़ा सब्जियां वगैरह, उन्हां दे विच ज़्यादा नहीं लोड़ पैंदी। जिन्ना भी अपना प्रोसैसड फूड आ जां वैल्यू एडिशन जिच होई आ
2: जी,
3: ठीक है, आपां उहदी फॉर्म बदल कर ली। हुण दाणे आ तो आटा बना लिया, देसी घे तैयार कर लिया, बटर तैयार कर लिया, दही तैयार कर लिया, ये सब चीज़ां वास्ते जिहड़ी एक विश्वास होना बहुत जरूरी आ खपतकार नूं। वो ग्राहक जिहड़ा सोचदा है कि मैं जे चीज़ लैनी आ वो डब्बा बंद होवे, लूज़ लैनी नहीं चाहेगा। और ये चीज़ां नूं ध्यान च रखदे होए सानूं लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। प्रोसैसिंग वास्ते इंडस्ट्री जिन्नियां उन्हां लई लार्ज स्केल दे लाइसेंस जिहड़े वड्डे मतलब कह दो, ते जिहड़े छोटे किसान हुंदे आ वो फूड सेफ्टी एक्ट दे तहत रेगुलेशन जो भी हैगी उहदे तहत उन्हां नूं रजिस्ट्रेशन करानी पैंदी है।

परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज

0: हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रेयांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत फिल्म से, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा और जयदेव का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसान

0: लड़कियों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

मौसम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में आराधना फिल्म से इसे लिया गया था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस गीत में मौसम फिल्म से इसे लिया गया था। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही संपन्न होता है।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गई।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसे जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थी और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थी। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहाँ राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

0: और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थी। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।
1: ये काल

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म।

के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।

क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनकी बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज़ खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले, फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि दी ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आई, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रोमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छाया गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी। हाँ, कुछ इश्क अधूरा रह जाता है, और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।

जब मेरी किताब छपेगी ना, तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं, और हाँ, तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन, जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर।

बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है। पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को, तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

0: गौरव छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडां दे तमगा जेतुआं ते हिस्सा लैण वाले खिडारियां नूं नकद इनामां ते प्रशंसा पत्र दे के सन्मानित करनगे। हरियाणा बिजली रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली सप्लाई नाल संबंधित दो नियमों विच सोध कीती है। मंग इकरार तो 10% वध बिजली दी वरतों लई कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। जन सेहत इंजीनियरिंग विभाग ने हरियाणा विच सीवरेज के कम्मां दौरान सुरक्षा उपावां नूं होर मजबूत करने लई एक उच्च पदरी निगरानी कमेटी का गठन किया। एसन मुख प्रदेशक खबरां।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: हुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। सुरसांझ प्रोग्राम दे सारे श्रोतियां नूं साडा प्यार भरिया नमस्कार। प्रोग्राम दा आगाज इस गीत दे नाल, संगीत मिक्सिंग दा गायक कलाकार बी प्राक।

0: ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੁਰਸਾਂਝ। ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜੱਸੀ ਐਕਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HP TDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
3: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
4: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
5: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने हुण साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फेर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।